फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

0: ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन

0: आप थुआ।
1: अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी रायपुर का ये FM चैनल है। लीजिए अब सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के विभिन्न कार्यक्रम।

आज का चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये विचार है कि अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, पर अज्ञानी बने रहना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 205। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता विविध भारती के

खजाने से इसके अंतर्गत गायिका आशा भोसले से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 7 बजे का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के।

खजाने से इसके अंतर्गत गायिका आशा भोसले से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 7 बजे का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार, जो केंद्रित होगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज। इसमें सुनिए अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की बातचीत। सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। प्रसारण समय याद रखिए सुबह 11 बजे, कार्यक्रम मन की बात। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। एक बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर के लिए और 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। सदा बहार नगमे ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 2:30 पर और दिन में 3 बजे आप सुनेंगे मन चाहे गीत। नाट्य तरंग, इस कार्यक्रम में नाटक अग्नि चक्र का दूसरा भाग सुनिए। मूल मलयालम लेखक हैं C.L. जोस, हिंदी नाट्य रूपांतरकार हैं P.G. वसुदेव और निर्देशक हैं भारत रत्न भार्गव। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय दिन में 3:30 पर। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा विशेष जयमाला, सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरवर चांद बख्शी की शौर्य गाथा आपको सुनवाई जाएगी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। 8 बजे कार्यक्रम होगा हवा महल, सुनिए नाटिका मूड। इसके लेखक और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत, 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विह्वल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृप्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता में आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए हैं ऐसा नायाब हीरा जिसकी रोशनी से, या कहें कि जिसके अलग अलग पहलुओं से उठती किरणों से हम सभी की आंखें चकाचौंध हैं। ये कार्यक्रम वर्ष 1982 में पहली बार प्रसारित किया गया था। आइए उस दिन को ताजा करें। संगीत सरिता कार्यक्रम की संकेत धुन वही जो 1982 में हुआ करती थी और उद्घोषणा भी उसी दिन की। आइए सुनते हैं।
1: यह आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। संगीत सरिता। आज आप सुनेंगे हमारा संगीत सरिता का विशेष कार्यक्रम। आज हम आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से। भेंट कर रही हैं डॉक्टर अचला नागर।

0: आयशा जी, यूं तो आप सुगम संगीत की गायिका के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन आपकी आवाज का जो पकाव है बतलाता है कि इसके पीछे शास्त्रीय संगीत की लंबी साधना रही है। क्या ये सच है?
1: साधना साधना तो है, लेकिन ज्यादा अगर क्लासिकल हम बहुत ज्यादा रियाज करें, जैसे कि क्लासिकल सिंगर करते हैं, यानी 8-8 घंटे तक गाना, अगर इतना रियाज अगर सुगम संगीत वाले करें तो उनके आवाज में वो लोच और एक मुलायम जो होती है मुलायमियत, वो रहती नहीं है। इसलिए हमें उतना रियाज नहीं करने दिया गया, लेकिन हमने रियाज किया है। रियाज यानी सुबह बहुत जल्दी उठना अंधेरे में और खर्च लगाना, उसके बाद 1 घंटे तक कम से कम हम लोग, मतलब मैं रियाज करती थी।
0: तो आपको मतलब घर में ही किसी से शिक्षा मिली या?
1: जी हाँ, मेरे पिताजी, मैंने आपको मालूम ही होगा,
0: जी हाँ
1: दीनानाथ मंगेशकर जी क्लासिकल सिंगर थे, उनसे हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मेरी बदकिस्मती से बहुत जल्दी, मैं छोटी थी जब वो चल बसे। उसके बाद मैं मास्टर नवरंग जी से गाना सीखती रही और व्यास संगीत विद्यालय की मैंने 4 किताब की परीक्षा भी दी है। अब वो किताबों की जो परीक्षा दी थी, अब मुझे वो सब याद नहीं है। और उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, इनका आए ना बालम, ये गाना मैं कॉपी किया करती थी।
0: अच्छा
1: मुझे उनका गाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और नज़ाकत सलामत, इतना हर तरह से बेहतरीन गाना, बहुत मुश्किल होता है। मेरी नज़र में बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं वो।
0: अभी आपने बहुत चोटी के संगीतकारों के कुछ के नाम लिए आशा जी, तो मैं ये आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप क्लासिकल की बहुत जानकार है, मुझे मालूम है आप सुगम संगीत के कलाकार हैं, लेकिन एक श्रोता तो ही सुरों का आपको ज्ञान है। ये जो खान साहब की, गुलाम अली खान साहब की जो आवाज़ थी, उसकी क्या चीज़ आपको अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या पसंद थी?
1: देखिए, एक तो संगीत के लिए, गाने वाले के लिए पहली चीज़ चाहिए वो आवाज़ और सुर, तान स्पष्ट, और जो बोल हैं, अगर वो ठुमरी गा रहे हैं तो वो बोलों की अदायगी क्लासिकल गाते हुए भी, तान लेते हुए भी इतनी अच्छी करते थे कि वो मन को लग जाती थी। बचपन से मुझे, मैं छोटी थी तब, तो उनके मैं गाने सुनती थी तो मुझे यही लगता था कि इनकी मींड उतनी ही अच्छी है, उतनी तान भी स्पष्ट है, छोटे कण कण दिखा के वो चीज़ को लेते थे। वैसे नज़ाकत सलामत, उनके जितना फास्ट तान मैंने आज तक सुनी नहीं। इतनी फास्ट तान और सरगम उतनी ही उनकी फास्ट थी, और जब वो स्लो गाते थे तब भी उनका संतुलन आवाज़ का, और तान जब फंस जाते थे तब का, वो कमाल का था मेरी नज़र में एक आर्टिस्ट।

0: की नज़र में।
1: हाँ जी, वैसे देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगीत और हमारा फिल्म संगीत दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को मिलाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है, महत्व है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जिन कुछ फिल्मी गानों में शास्त्रीय संगीत का पुट दिया गया है, वो सालों साल वैसे ही ताज़ा रहते हैं, सुनते हैं तो तब ऐसा लगता है कि कानों को वैसे ही मीठे लगते हैं। तो ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत का उपयोग कहाँ तक फिल्मी गानों में किया जा सकता है?
0: पहली बात तो ये है अचला जी कि शास्त्रीय संगीत से हर गाना बनता है। शास्त्रीय संगीत नींव है, फिर इमारत खड़ी रहती है। तो आप कोई भी गाना लीजिए, उसमें शास्त्रीय संगीत होना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आप कहती हैं कि सुगम संगीत में शास्त्रीय संगीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक शुद्ध राग रखेंगे तो वो एक जैसा लगेगा। जैसे मालकंस का गाना, अगर आप चार गाने बनाएंगे तो एक जैसा लगेगा, क्योंकि वो जो सुर हैं वो ही रहेंगे, इसीलिए वो एक जैसा। लेकिन उसमें अगर दूसरे सुर मिलावट करेंगे तो वो थोड़ा अलग लगेगा और अच्छा लगेगा। और फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि राग में मिलावट करें और बहुत खूबसूरती से मिलावट करें तो बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब ये कि ज्यादा उसमें आलाप और मुर्कियां और हरकतें ये नहीं होना
0: नहीं,
1: चाहिए।
0: हरकतें मुरकतें सब हो,
1: हाँ
0: लेकिन एक राग की, जैसे सात सुर, एक कोई भी राग लीजिए आप, अगर वही सेम राग में अगर आप 10 ट्यूनें बनाएंगे तो वो एक जैसी लगेंगी,
1: अच्छा,
0: इसीलिए मिलावट करने से वो अलग अलग लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी।
1: एक सवाल है तो बहुत साधारण, लेकिन आपके मुंह से ही इसका हम उत्तर सुनना चाहते हैं कि जैसे कि नियमित रूप से किसी का पेशा है गाने का, वो रोज गाता है, गाया आके वापस लौटा है, लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरी है कि वो तानपुरा छेड़े और आवाज को खोले, रियाज करे?
0: जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो भगवान ने दी हुई आवाज़ होती है वो उम्र के 20 साल तक रह सकती है। उसके बाद उसमें कंपन आने लगेगी, उसमें वो जोर नहीं रहेगा। इसलिए हर सिंगर को सुबह उठ के रियाज करना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे कि सिगरेट पीना, इससे भी गले में,
1: अच्छा,
0: सांस में फर्क पड़ता
1: जी
0: है। ये सब चीज़ें संभालनी चाहिए और रियाज करना बहुत ज़रूरी है। मेरी नज़र में रियाज करना चाहिए, क्योंकि आज तक मैं भी रियाज करती हूँ।
1: जी धन्यवाद आशा जी, आपने अपने अनुभवों के आधार पर संगीत साधना करने वालों के लिए एक अनमोल बात कही है कि स्वर की साधना बहुत आवश्यक है। और अब ये संगीत सरता कार्यक्रम के श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रही थी डॉक्टर अचला नागर।
3: मित्रों, कई बार हमें लगता है ना कि लता जी, आशा जी यदि शास्त्रीय संगीत की कोई रचना गाएं तो कितना अनूठा लगेगा। लेकिन डॉक्टर अचला नागर से आशा भोसले की ये जो बातचीत हमने सुनी, उससे कई बातें स्पष्ट हुई। उनके लिए शास्त्रीय संगीत तो संभव था ही, लेकिन नवरसात्मक प्रतिभा की पहचान बनाने वाली सुगम संगीत के समंदर की मलिका की ये आवाज जो है, इसकी जितनी दाद हम देंगे वो कम होगी। मित्रों, आइए आशा भोसले के गाए दो गीत के अंश सुनते हैं। पहले सुनिए कारवां फिल्म का गीत, जिसमें स्केल यानी सुर पट्टी बदलकर आशा जी ने क्या खूब गाया है।

और आइए अब सुनते हैं एक और फिल्मी गीत का अंश। फिल्म है विजेता और ये गीत पूरी तरह शास्त्रीय संगीत पर आधारित है।

विविध भारती के खजाने से आज आप सुन रहे थे मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले से बातचीत। इसके साथ ही आज का हमारा ये संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। पहला जो गीत है ये किस्मत फिल्म का गाना अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाज़ों में, कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना, संगीत अनिल बिस्वास का। आज इन गीतों के माध्यम से संगीतकार अनिल बिस्वास को उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ज्वार भाटा फिल्म का ये गाना, अरुण कुमार और साथियों की आवाजें, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत अनिल बिस्वास का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ,

0: वाणी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, एहसान रिजवी के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।

बेकसूर फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, लेकिन अभी इस वक्त कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। जासूस फिल्म का गाना, आवाज आशा भोंसले की।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और अनिल बिस्वास का संगीत बद्ध किया ये गाना गीता रॉय की आवाज में, फिल्म का नाम है हीर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए छोटी छोटी बातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने, धुन बनाई अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत, फिल्म का नाम राही।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना मौसम फिल्म से है। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें, बोल गुलजार के, संगीत है मदन मोहन का।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना मौसम फिल्म से है। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें, बोल गुलजार के, संगीत है मदन मोहन का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती से कार्यक्रम जारी है, हम हैं राही प्यार के। धर्म करम इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

अंतराल के बाद हम हाजिर हैं हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में एमजे हशमत का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम दो झूठ।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम है नाच उठे संसार।

एक महल हो सपनों का, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, सही लुधियानवी के बोल, संगीत रवि का। यह है कार्यक्रम का

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने

0: पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार

0: में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली, कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर IPL 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर RCB को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला IPL खिताब जीतने वाली RCB ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि IPL 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत

0: की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु

इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से खतरे में मत डालिए। आज ही और अभी दृढ़ संकल्प लीजिए, नो टोबैको, अब और तंबाकू नहीं।

तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये कार्यक्रम विविध भारती के लिए आकाशवाणी कोटा की प्रस्तुति।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं हम हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म का गाना नीति मोहन, विशाल दादलानी, के और शंकर महादेवन की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है विशाल शेखर का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ओम शांति ओम, इस फिल्म का गाना के की आवाज में, विशाल का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत। आज प्लेबैक सिंगर के को उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

अब आपको सुनवाते हैं दस फिल्म का गाना। फिल्म का नाम है दस, शान और के की आवाजें हैं, पंछी जालौनवी के बोल और संगीत विशाल शेखर का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी जो शहीद।

दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, लेकिन पहले ये संदेश।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मोतीलाल भीम।

अजय एवं साथी और साथ ही रूपवंती बघेल एवं साथी। कार्यक्रम का प्रारंभ लोक भजन से करते हैं जिसके शब्द हैं लाहो झन ले रे।

आइए अब सुनते हैं ददरिया, जिसे स्वरों से सजाया है मनहरण वैष्णव एवं रूपवंती बघेल ने।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: FM बेंच पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है जहां आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं मया बांध ले ये कर्मा गीत।

इसी के साथ आज लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।

एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सबरंग। लेकिन पहले ये संदेश।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुँचत है जन जन के द्वार।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
3: सबरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं का संगीत के सुरीले सफर में अभिनंदन, और आप सभी स्वीकारिए अपनी होस्ट और दोस्त रोली तिवारी का स्नेहिल वंदन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अच्छे ही होंगे साथियों। संगीत के सुमधुर सफर

मैं हर बार आपकी पहचान एक नई विषय वस्तु से करवाती हूँ। आज की कड़ी में पिछली बार के राग बिहाग पर चर्चा करेंगे और साथ मिलकर इस राग में सजे कुछ गीत सुनेंगे। श्रोताओं, राग बिहाग बहुत सुरीला राग है। इसमें हमारे संवेगों को अलग अलग भावों के आधार पर प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता आसानी से मिलती है, क्योंकि इसकी संरचना सरल है। कारण वही कि यह राग थाट बिलावल से उपजा है, जहां सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। साथियों, हम सभी

क्योंकि इसकी संरचना सरल है। कारण वही कि यह राग थाट बिलावल से उपजा है, जहां सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। साथियों, हम सभी के जीवन में दोस्ती भी एक ऐसा ही शुद्ध और निश्चल भाव है, जो रिश्तों की अनमोलता और जीवन की नश्वरता का जश्न मनाता है। तो आइए सुनते हैं आज का पहला गीत, जो राग बिहाग में स्वरबद्ध और सच्ची दोस्ती के दुर्लभ भावों को संजोए हुए है।

राग बिहाग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है। यही कारण है कि फिल्म संगीत में भी जहां संवेगों को विभिन्न रंग गीतों के रूप में देखने सुनने को मिलते हैं, वहां राग बिहाग बहुतायत से उपयोग में लाया जाता है। इस राग से सजी धुनों की एक विशेषता यह भी है साथियों कि इसमें विशेष प्रकार की मनुहार या जिसे बोलचाल की भाषा में हम शिकायत या मान मनवल कहते हैं, वो भाव भी बड़ी सुंदरता से दर्शाया जा सकता है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: राग बिहाग प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग होने वाला एक बहुत मीठा राग है। ये श्रृंगार रस प्रधान राग है जो शास्त्रीय संगीत की धारा में रात के दूसरे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। फिल्मकारों ने राग की इस प्रकृति का उपयोग कई गीतों में बड़े सटीक ढंग से किया, जहां उन्होंने न केवल राग की प्रकृति या गायन प्रहर का ध्यान रखा, बल्कि इस गायन समय का सदुपयोग प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए बेहद खूबसूरत ढंग से किया, जैसे इस अगले गीत में।

श्रोताओं, आपने रायपुर आकाशवाणी का FM चैनल ट्यून किया है और सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग, जहां आज हम राग बिहाग से सजे गीतों पर चर्चा कर रहे हैं। श्रोताओं, बिहाग राग की एक और विशेषता यह है कि ये न केवल प्रेम को अभिव्यक्त करने में सहायक है, बल्कि प्रेम के एक अन्य रूप दीवानगी और समर्पण को दर्शाने में भी इस राग में गुथी धुनें बखूबी अपनी भूमिका निभा पाती हैं, जो प्रेम की तीव्रता

तिघा तिघा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

ठाट बिलावल का यह राग बिहाग, जहां प्रेम जैसे संवेग की विभिन्न रंगों को दर्शाने की क्षमता रखता है, वहीं एक अन्य संवेग या प्रेम का दूसरा रूप विरह को भी सरलता से खुद में संजो लेता है। इसके माध्यम से एक गहरे मानसिक और भावनात्मक अलगाव को बखूबी दर्शाया जा सकता है, जहां इंसान अपने ही जीवन में एक अजनबी बन जाता है।

सबरंग कार्यक्रम में राग बिहाग से सजे गीतों का सफर आज यहीं तक दोस्तों। अगली मुलाकात में एक नए राग और ढेर सारे गीतों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट और दोस्त रोली तिवारी को दीजिए अनुमति और स्वीकारिए मेरा स्नेहिल नमस्कार।

0: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अभी आप हमारा दैनिक कार्यक्रम सबरंग सुन रहे थे। 9:55 होने को हैं, हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत कल 1 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इन चुनावों के लिए शनिवार रात 12 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 से 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है, शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मत पेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज ऑन AIR वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण न्यूज ऑन AIR, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा।

0: हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए से व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों में सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तंबाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना चाहिए। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज अंतिम दिन है। इस महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। महोत्सव में बस्तर संभाग के जंगलों में मिलने वाले करीब 150 दुर्लभ किस्मों के आमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये आम आदिवासी अंचल के स्थानीय हाट बाजार में उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चांपा स्टेशन में चौथी रेल लाइन को जोड़ने के लिए बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। इस वजह से 7 से 19 जून के बीच रद्द की गई सभी ट्रेनें अब बहाल कर दी गई हैं और वे अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी अधिकृत पूछताछ सेवाओं तथा वेबसाइट से जरूर कर लें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनावों के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और खेत बचाओ अभियान देशभर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.6 MHz पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मधुरिमा। लेकिन पहले ये संदेश।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार बहुचित है जन जन के द्वार।
2: मधुरिमा में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत पंकज उदास जी की आवाज में।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह जी के सुरों से सजी निदा फाजले की लिखी ये गजल।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं गैर गीत फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम मथुरिमा। आइए कैलाश खेर की आवाज में कैलाश, परेश और नरेश का लिखा ये अगला गीत सुनते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आइए अब सुनते हैं पलाश की आवाज से सजा ये सुमधुर गीत।

लीजिए अब सुनिए कॉलोनियल कजन्स की स्वरों से सजा राजेश जौहरी का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में मशहूर शायर बशीर बद्र जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी लिखी गजल सुनते हैं, जिसे सुरों से सजाया है जगजीत सिंह जी ने।

0: इसी के साथ मधुरिमा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10:55 होने को हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम,
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर

0: टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
12: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
13: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स

0: कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, कह रही भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कहा भी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
2: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को यही सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
0: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा। कि इंडियंस भी भाग सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि

0: इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा,

इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं।

इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं।

साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले

0: इन्हें मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दिन के 11:32 हुए हैं। प्रस्तुत है मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद।
3: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप मन ले जुरिया के मोला बहुते खुशी होवत हे। देश के आने आने हिस्सा मा हमर देश के लोगन मन देश हित मा समाज हित मा ऐसन अद्भुत काम करत हैं और जब उनखर विषय में सुनथन तो हमन ला एक नवा प्रेरणा मिलते। आज कार्यक्रम के शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश के ऐसने उपलब्धि लेकर हूँ। कुछ दिन पाछ

झारखंड के रांची मा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुईस। एमे करीबन 800 एथलीट मन हिस्सा लेन देश भर ले आए रहिन। ये दौरान चार आने आने आयोजन मा चार राष्ट्रीय कीर्तिमान टूटीस। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, ये संगवारी मान आने आने श्रेणी मा नवा कीर्तिमान बनाइन। मैं सबले पहली त ये सबो मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, एक आयोजन जेखर देश भर मा बहुते चर्चा हुआ थे वो है 100 मीटर रेस, 100 मीटर के दौड़। खाली 2 दिन के भीतरी पुरुष 100 मीटर के दौड़ मा राष्ट्रीय कीर्तिमान 3 घाव टूटिस। जेन 2 झन एथलीट मन ये कमाल दिखाए हैं वो हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं सोचे

0: तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार। ये संगवारी मान आने आने श्रेणी में नवा कीर्तिमान बनाइन। मैं सबले पहली तो ये सब मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, एक आयोजन जेखर देश भर में बहुते चर्चा हुआ थे वो है 100 मीटर रेस, 100 मीटर के दौड़। खाली 2 दिन के भीतरी पुरुष 100 मीटर के दौड़ में राष्ट्रीय कीर्तिमान 3 घाव टूटिस। जेन 2 जन एथलीट मन ये कमाल दिखाए हैं वो हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं सोचे ये पई मन की बात मा ये दोनों खिलाड़ी मन ले गोट करे जाए। अनिमेश जी जोहार, गुरिंदर वीर आप मन लग घलो जोहार, सत श्री अकाल।
1: जोहार सर।
2: जोहार सर।
0: अच्छा भैया, आप मन ता बहुते बड़का उपलब्धि पाए हो। आप मन के जोड़ी है घलो बड़का कमाल करे है। हमन संगीत मा ता जुगलबंदी देखे रहें, फिर चुनौती मा अब जुगलबंदी होते कि एक घाव एक झन चुनौती देते, फिर दूसर उही चुनौती ला उठा लेते, फिर तीसरैया घाव कर लेते। बहुते रोचक विषय रहे हैं आप मन के। मैं चाहता हूँ कि मन की बात के सुनैया मन ला पता चले कि आप मन के विषय मा वो मन ला जानकारी होए। आप मन जेन पराक्रम करे हो ओखर पता चले।
1: जोहार सर, मोर नाव अनिमेश कुजूर। मैं 200 मीटर और 400 मीटर के राष्ट्रीय कीर्तिमान धारक हूँ और मैं छत्तीसगढ़ के रहैया हूँ सर, और अभी मैं उड़ीसा ले खेलता हूँ। मैं पाछू बच्चर एशियाई पदक और विश्वविद्यालय खेलकूद पदक लेके आए हूँ और मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करे हूँ। जब मैं स्कूल ले पास हो रहे हूँ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर ले पास हुए हूँ और मैं पहली फुटबॉल खेलत रहे हूँ। अब मोर दाई दादा मन कोविड के बखत मोला थोर बहुत छूट देवत रहिन कि तैं बाहर जाके दौड़ ले खेल ले। ता जब कोविड खत्म होए लगीस तब मोर फुटबॉल के दोस्त मन मोला कहिन कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होइया है, तैं घलो भाग ले। अब मैं भाग ले और मोला पता नहीं रहीस कि वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर के चयन हुआ थे। मैं वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुए और आज मैं भारत के प्रतिनिधित्व करत हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में।
0: औ गुरिंदर वीर सिंह जी का है?
2: जोहार सर, मोर नाव गुरिंदर वीर है और मैं भारतीय जल सेना मा पैटी ऑफिसर हूँ और मैं भारत के सबसे तेज धावक हूँ। अभी मैं 100 मीटर मा 10.09 के राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाए हूँ और मैं पहली भारतीय हूँ जेन 10.1 के बाधा के नीचे भागे है। और मैं प्रयास करत हूँ कि मैं ट्रैक और वर्दी में घलो अपन देश के सेवा करो। मोर दादा और बाबा दोनों खेल कूद वाला रहिन। ता हमर भारत के संस्कृति है जब भी कोनो त्यौहार आते जैसे दिवाली, जैसे नवा बछर, ता हम अपन घर के सफाई करथन। ता मैं अपन दादा के ट्रॉफी और पदक मन के सफाई करत रहो ता मोला वो बहुत अच्छा लागत रहीस। मैं बहुत खुश होवत रहो। त जब मैं कोनो ट्रॉफी साफ करत रहो तब मैं पूछत रहो कि भाई ये ट्रॉफी कहाँ जीते रहो, ये पदक कहाँ जीते रहो, ये फोटो कब के है। तब फिर वो मन मोला अपन कहानी सुनावत रहिन कि भाई मैं यहाँ खेले बर गेऊ, मैं ये राष्ट्रीय पदक जीतेऊ, मैं अपन टीम ला ए में जितायो। तब फिर मैं घलो वो मन ला बोलेव कि भाई मैं घलो कोनो खेल खेलना चाहत हो। वो बिहनिया दौड़े बर जावत रहिन तब मैं उनला बोले हो भाई मोला घलो अपन संग ले जाए करो। तब मोला ले के जाए लगिन तब वो मन अपन खेल मा जिन सीखे रहिन वो मोला सिखाए लगिन। तब मोर रुचि बने लगीस। मैं उसेन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड टूटत देखे हो, एक मनोरंजक कहानी है। मैं टीवी देखत रहो तब मोर दाई टीवी ला बंद कर दीस कि बेटा अभी पढ़े के बेरा हो गए है, तय पढ़। तब मैं कहो भाई ठीक है, आप मन मोला टीवी देखेला नहीं देवत हो, एक दिन ऐसे आही आप मन मोला टीवी मा खोजू कि देखो वो गुरिंदर दौड़त है। तब मोला घलो खुशी होते जब मोर दाई मोला टीवी मा दौड़त देखते।
0: वाह वाह वाह, बहुत शानदार बात है भाई आप मन के।
2: हाँ जी, मध्यम वर्गीय परिवार है सर, फिर मोर दादा बालीबाल खेल

0: रहिन। घर के समस्या के चलत वो मन अपन खेलकूद छोड़ दिन। ओकर जेन सपना रही गई रहीस त वो मन मोर भीतर वो सपना देखिन, भाई मोर बेटा वो सपना पूरा करही। त मैं उखर ले बात करेव, फिर सुनत रहो मिल्खा सी अतका मेहनत करत रहिन। मैं वो मन ला कहत रहो, मैं घलो एक दिन आप मन के सपना पूरा करूँ। त बोलिन, सपना पूरा ऐसे नहीं होए, एकर बर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ते, मेहनत करना पड़ते। मिल्खा सिंह जी खून के उल्टी करत रहिन, धूप माँ भागत रहिन, पूरा पूरा दिन प्रशिक्षण करत रहिन। ता वो चीज़ मोला प्रेरित करत रहिस, मोर दादा मोला प्रेरित करत रहिन कि मैं भागू ता अपन देश खातिर, देश खातिर पदक लावाओ जीताओ। और ये घलो रहिस कि भाई जब मैं 100 मीटर के विधा के चयन करेव त सबो मन कहत रहिन कि भाई 100 ला झन कर, 100 भारतीय मन के विधा नहीं है, भारतीय मन के शरीर 100 मीटर बर नहीं बने हैं। त मैं और मोर दादा हरदम बोलत रहन कि अभी गुरिंदर ए चयन करे है, हम एकर ले पाछू नहीं हटबो। जेन मन हमन ला बोलते कि भाई हम नहीं कर सकन, हम वो मन ला करके दिखाबो औ ते करके दिखाबे, मोला तोर ऊपर भरोसा है। त वो भरोसा जब मोर दादा मोर ऊपर करीस त मैं वो भरोसा ला अपन हिम्मत बना के चलेव। औ आज हर भारती बोलते कि भाई भारती दौड़ाओ।
1: देखो आप दोनों जन बहुते बड़का कमाल करे हो, और खाली 2 दिन के भीतरी आप दोनों जन 3 घाव राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हो। 100 मीटर के रेस में दौड़ना, जैसे गुरिंदर वीर है कहिस कि लोगन कहते हैं कि भारत के लोगन मन के बदन ये काम बर हैच नहीं, अत का अलकर होवत हुए घलो आप मन काम करे हो। तो ये दोनों मन ले मैं जानना चाहूँ और मन की बात के सुनैया मन घलो सुनना चाहिए कि कौन से जज्बा रहीस, का जिद रहीस, का सोचे रहे हो और कैसे करत रहे हो, ये कतका मुश्किल होते।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं शुरू में जब संघर्ष करत रहे हो सर, कईयों बार संसो में रहे हो कि मैं सही करत हो, मैं सही चयन करे हो, काहे कि हर बारी आप मन नहीं जीता हो, कभू कभू आप मन सीखता हो, जब मैं हारे हो, जब मोर सही प्रदर्शन नहीं आईस, जब चोट लग जात रहीस तब मोर घर वाला मन मोला सहारा देन कि भाई कुछ नहीं, एक दिन बुरा चल दीस, एक बछर बुरा चल दीस, त एकर ले जिंदगी खराब नहीं होए, सपना देखना नहीं छोड़न। तब मोर प्रशिक्षक का घलो मोला ये सिखाइस कि अगर तय नहीं करबे तो कोनो औ नहीं कर पाही। त ऐसने जब हमर समुदाय हमर तीर तखार के लोगन मन हमला उत्साहित करते ता हमर प्रोत्साहन नहीं टूटे।
1: अनिमेश जी।
2: सर, मोला ता सबो मन बोलत रहिन जब मैं 2021 मा एथलेटिक्स चालू करेऊं, तब मोला कहिन कि देख ए नवा क्षेत्र है, तय कर पाबे कि नहीं, तब मैं कहूँ कि मैं ए क्षेत्र में घुस गए हों तक करवे करूँ। मोर दादा घलो हरदम मोला बोले कि तय ए क्षेत्र में घुसे हस तो कभू पाछू मुड़ के झन देखबे, काहे कि सोचते ता सबो मन कि ये करना है वो करना है, फिर करके बहुते कम झन दिखाते। तैं बस यही क्षेत्र में घुसे हस त यही मरेबे, यही माँ आगू बढ़बे, तोला सब्बो सुविधा सब जिनिस सहयोग हम करबो, पारिवारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सब्बो चीज हमन करबो, बस तैं मेहनत कर और भारत ला देखा कि भारतीय मन घलो भाग सकते। काहे कि लोगन मन मोला घलो कहत रहिन कि भारतीय मन के जीन्स ऐसे नहीं हैं कि वो मन 10 के नीचे या 10.1 के नीचे माँ भाग ले सकें या तेज दौड़ सकें, फिर अब हम दोनों जन सिद्ध करे हन कि भारतीय मन घलो कर सकते, ऐसन कोनो कठिन नहीं है हमन बर, हम घलो सब कुछ कर सकत हन। त सर, ये सबो मोला बहुत प्रोत्साहित करते, और जैसे जैसे हम प्रशिक्षण करत हन हम और अपन समय सीमा ला तोड़त हन, और बाकी भारतीय मन ला घलो ये दिखत है कि भारतीय मन घलो कर सकत हैं, और हम औ करबो सर अभी, और हम दोनों जन के चयन कॉमनवेल्थ गेम खातिर घलो होए है, त वहाँ अवैया प्रतियोगिता में हम और अच्छा प्रदर्शन करबो।
1: अच्छा देखो, मोर मन में घलो एक कौतूहल है और लोगन मन ला घलो हो ही। मैं सुने हूँ कि आप दोनों जन अच्छा दोस्त घलो हो, आप दोनों जन कुछ ठाने रहे हो का कि तय मोर रिकॉर्ड तोड़ेस त मैं तोर रिकॉर्ड तोड़ देवाऊँ का, पहली अनिमेश बताही।

0: सर जी, पहली रिकॉर्ड 10.18 के रहीस, जेन मोरेच रहीस, और फिर एला गुरिंदर वीर भैया हा सेमीफाइनल में तोड़ देस 10.17 करके, और मैं फिर ओला दूसर सेमीफाइनल में 10.15 करके तोड़ देऊँ। तो ओ बखत जब मोर सेमीफाइनल होइस तो हम दोनों झन खुश होइन कि चलो ठीक, आज रिकॉर्ड टूटिस और चलो हम दोनों झन तोड़ेन। काहे कि वो बखत प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदिता रही थे, फिर हम दोनों झन पहली स्थान के रखे रहन। एकर ले पहली हमन प्रतियोगिता बर सऊदी अरब घलो गए रहन, वहाँ हम दोनों झन एक कमरा में रहन। त हम दोनों वहाँ गोट करन कि भारत के दौड़ ला आगू लेके जाना है, और हमरे छात में है वो चीज, हम जेन करबो वो आने मन ला प्रोत्साहित करही।
1: गुरिंदर वीर का कहना चाहू?
2: हम दोनों झन निर्णय करे रहन, हम दोनों झन बने दौड़बो, त सर एक दूसर ला कभू जरूरत होते ता एक दूसर संग खड़े होथन। जैसे अभी रिकॉर्ड करे ले पहली जब मैं रिकॉर्ड करेव फिर अनिमेश करीस, त जब हम वार्म अप करत रहन त मैं अनिमेश ला बतावत रहो कि अनिमेश वो ब्लॉक सही है, ओमे जाके बैठ, उहां ले छलांग लेबे, हमन वार्म अप यहाँ करबो, यहाँ वार्म अप सही होही, त एक दूसर के मदद करथन त दूसर मा घलो सुधार होते, हमन मा घलो सुधार होते, दोस्ती घलो चाही। फिर मैदान के बाहर है सर, प्रतियोगिता के बाहर है ता हम दोस्त हन, जब हम मैदान में जाथन ता एक दूसर के प्रतियोगी बन जाथन, ता ये होते कि मैं एकल ले ज्यादा तेज भागू, मैं एकल ले तेज भागू।
1: देखो आप मन जेन स्पर्धा करे हो ना, वो देश के मान बढ़ाए खातिर करे हो, देश ला भविष्य मा ये ठिया तक पहुँचाए खातिर करे हो, और एक सकारात्मक भावना ले करे हो, और मैं मानता हूँ कि आपके ये जेन खेल भावना है, खेलना घलो है, एक दूसर ला चुनौती घलो देना है, और फिर आगू निकले के प्रयास करना है, और फिर आगू जाए बर एक दूसर के सहायता करना है। ये अद्भुत काम करे हो आप मन, मोर कोती ले आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना, और आप मन देश के नाव घलो उज्जर करहू, मुला पूरा विश्वास है आप मन ऐसने मेहनत करत रहो, बहुत प्रगति हो ही, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना।
0: धन्यवाद सर, आप मन के धन्यवाद।
1: गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, ये बखत देश के ज्यादातर हिस्सा मा बहुत गर्मी पड़त है, तेज घाम गरम हवा, ऐसन मौसम मा अपन ध्यान रखना बहुते जरूरी है। पानी पियत रहो, घाम मा अगर निकलना पड़े तो थोकिन संभल के निकलाओ। ये दिशा मा सरकार के आने आने विभाग मन जिन दिशा निर्देश जारी करे हैं वो घलो भुलाहू जन। संगवारी हो, हमार यहाँ गर्मी ले लड़े के तरीका कईयों बार रसोई में घलो मिलते, आप मन घलो देखे हो, जैसे जैसे गर्मी बाढ़ते वैसे वैसे घर के रसोई के स्वाद बदलत जाते, रसोई के प्रकार बदल जाते, कहूँ मटका के पानी निकलते, कहूँ दही जमे लगते, त कहूँ कच्चा आमा उबले लगते, और फिर शुरू होते देसी पेय के दौर। देसी पेय ले आप मन घलो परिचित हो, अगर आप मन उत्तर भारत में जाहू तब बने जगह आप मन ल मिलही आम पना, कच्चा आमा के स्वाद और गर्मी ले राहत घलो। पंजाब हरियाणा जाहू तो लस्सी मिल जाही, बड़का गिलास वाला लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाना के संगवारी बन जाते, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू के शरबत, ओखर तो बातें का है, पेट घलो भरा है ताकत घलो देवाए। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और उड़ीसा में बेल पना, वो खाली पेय नहीं भारत के आने आने क्षेत्र के परंपरा के हिस्सा है, और एमे एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के झलक घलो मिलते। और एक ठन बात खचित ध्यान रखू, एमे ले ज्यादातर जिनिस हमार अपन रसोई ले निकले है, हमार खेत

खलिहान ले निकले हे, कोनो बड़ा ब्रांडिंग नहीं है, फिर पीढ़ी मन के अनुभव एमे समाय हुए हे। आप मन घलो गर्मी मा देशी पेय के खूबे आनंद लेवाओ। संगवारी हो, गर्मी के आतेच एक ठन औ चर्चा हर घर मा शुरू हो जाते, औ वो है आमा। आमा, आम चर्चा के विषय होते। भारत मा शायदे कोनो घर हो ही जिहां गर्मी मा आमा के बात नहीं होत होवे। हर इलाका के अपन आमा, अपन स्वाद, अपन सुगंध। महाराष्ट्र औ कोंकण के हापुस, अल्फांसो, गुजरात के केसर, ये त आमरस के जान हैं। उत्तर प्रदेश के दशहरी औ मोरकाशी के लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम के खास बात होते, पके के बाद घलो ओखर रंग कईयों बार हरच रही थे। बिहार के जरदालू, जेखर सुगंध दूरेच ले चिन्हा जाए। चौसा, मालदा, हर नाव के संग लोगन मन के सुरता जुरियाए है। दक्षिण भारत जावो त बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल के हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सुवर्ण रेखा। माने ठिया बदलते, आमा के रंग रूप और ओखर स्वाद घलो बदल जाते। और संगवारी हो, आमा के ये यात्रा अब गांव ले वैश्विक बाजार तक घलो पहुँचा थे। आज मन की बात के माध्यम ले मैं आमा के पैदावार ले जुड़े अपन किसान भाई बहनी मन के प्रशंसा करूँ। आप मन देश के कृषि अर्थव्यवस्था खातिर आम किसान नहीं, बहुत विशेष हो, ऐसने छाए रहो। संगवारी हो, गर्मी के ये दिन मा ऐसे ता स्कूल मन के छुट्टी होते, फिर मैं एक ऐसन वर्ग के बात करूँ जेमे आप मनला प्रवेश लेके मन कर जाही। संगवारी हो, एक स्थिति के कल्पना करो। एक ऐसन स्कूल जिहां लइका मन आते, युवा मन आते और सियान मन घलो, जिहां कोनो फीस नहीं लगे, कोनो बड़का इमारत नहीं है, कोनो कक्षा घलो नहीं है, और सबले रोचक बात उहां कक्षा नदिया में लगते। संगवारी हो, ये कोनो कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा मा साजी वाला शेरिल जी ऐसने एक ठन तैराकी क्लब चलावत हैं। अब तक 15,000 ले ज़्यादा लोगन मन यहाँ तौरना सीख चुके हैं। साजी जी हा दिव्यांग लइका मन ला घलो तौरना सिखोए हैं। ये प्रयास के पाछू एक पीड़ा घलो छुपे है। कुछ बछर पाछू एक नाव दुर्घटना मा कईयों छात्र मन के मौत हो गए रहिस। ये घटना हा साजी जी ला भीतरी तक झकझोर देस। वो मन सोचिन, अगर लइका मन ला तौरना आवत होतीस तो शायद कईयों जान बच जातीस। बस इन्हें ले शुरू होइस उनखर ये अभियान। संगवारी हो, साजी वाला शेरिल जी के जिंदगी हमन ला एक ठन बहुते बड़का सीख देते। सेवा करे बर बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होवे, जरूरी होते एक अच्छा इरादा और सरलक करेगे प्रयास। एखरे दम मा हजारों लोगन मन के जिंदगी मा बदलाव लाए जा सकत है। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, पहाय दिन मा मुला यूरोप के नीदरलैंड जाए के मौका मिलिस। उहां मैं कईयों ठन बैठक में सम्मिलित होए। इही दौरान एक ऐसन क्षण आईस जेन हर भारतीय ल गर्व ले भर देस। नीदरलैंड मा आयोजित एक विशेष समारोह मा चोला काल के प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत ल वापस सौंपे गईस। ये कार्यक्रम मा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री घलो उपस्थित रहिन। ये ताम्र पट्टिका मन ल लेके मुला देश विदेश ले सरलग संदेशा मिला थे। लोगन मन खुशी व्यक्त करत हैं, गर्व व्यक्त करत हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में घलो एला लेके विशेष उत्साह है। संगवारी हो, ये ताम्र पट्टिका मन ला लेके लोगन में बने जिज्ञासा घलो है। यही पाए के आज मैं एखर ले जुड़े कुछ बात आप मन संग साझा करना चाहत हूँ। एमे 21 बड़ा और 3 छोटे ताम्र पट्टिका है।

ये मुख्य रूप ले राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला के एक ठन वचन ला पूरा करे ले जुड़े हे। एमे आनई मंगलम गांव के एक बौद्ध बिहार ल दान दे के उल्लेख है। ये ताम्र पट्टिका मन मा चोला वंश के उपलब्धि के वर्णन घलो मिलथे। एखर ले पता चलथे कि चोला साम्राज्य के समुद्री शक्ति कतका जबर रहिस। दक्षिण पूर्व एशिया के देश मन संग इनखर संबंध के जानकारी घलो एमे मिलथे। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति मा हम सबो मन ला बहुत गर्व है। संगवारी हो, हमर सरकार भारत के ऐसन अमूल्य धरोहर मन के संरक्षण खातिर सरलग प्रयास करत हे। इही क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार मा घलो एक महत्वपूर्ण खोज होए हे। यहाँ 3 ठन दुर्लभ ताम्र पट्टिका मिले हे। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासन काल ले जुड़े माने जात हे। विशेषज्ञ मन मानते कि ये शिलालेख 6वां-7वां सदी के हे, माने 1400-1500 बछर जुन्ना ये ताम्र पट्टिका मन प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाखा मा लिखाए हे। एमे वो बखत के शासन व्यवस्था धर्म और संस्कृति के बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी मिलते। संगवारी हो, हम भारतीय मन मा खगोल विज्ञान माने एस्ट्रोनॉमी ला लेके हरदम विशेष आकर्षण रहे हे। हमर देश मा आज घलो कईयों सदी जुन्ना वेधशाला विद्यमान हे। यहाँ अद्भुत गणितीय खोज होए हे। नवचालन हो, पंचांग हो या हमर परब तिहार, ये सब के संबंध आगास और तारा मन ले रहे हे। हमर यहाँ एस्ट्रोनॉमी हर पीढ़ी मा कौतूहल जगाए हे, एला अन्वेषण बर प्रेरित करे हे और आज के युवा मन मा घलो एला लेके बने उछाह दिखते। आजकल आप मन घलो देखत हो, देश भर मा एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी ले लोकप्रिय होवत हे। बड़ा शहर ले छोटा कस्बा तक, स्कूल ले बगीचा तक इनखर गतिविधि देखे ला मिलते। मुला बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलिस। यहाँ अवलोकन सत्र आयोजित करे जाते। ये संस्था है ग्रामीण क्षेत्र मा एस्ट्रोनॉमी ला लोकप्रिय बनाए के मिशन घलो शुरू करे है। खगोल मंडल नाव के एक टीम है 30 घंटा के एक बहुते नवाचारी पाठ्यक्रम शुरू करे है। संगवारी हो, रात मा तारा मल निहारना अपन आप मा अद्भुत अनुभव होते। एस्ट्रो केरला नाव के एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और कार्यशाला आयोजित करते। यहाँ युवा साथी मन टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स के उपयोग करना सीखते। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब है गीर के जंगल ले कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट आयोजित करे है। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था घलो एस्ट्रोनॉमी के सबले जुन्ना संस्थान मा एक है। यहाँ अवलोकन सुविधा के संगे संग किताब पुस्तकालय और टेलीस्कोप लाइब्रेरी के सुविधा घलो है। मैं आईसेक के घलो उल्लेख करना चाहूँ। ये एक विद्यार्थी मन द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है जिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब मनला आपस में जोड़ते। संगवारी हो, अपन शौक बर बखत निकालना और सरलग कुछ नवा सीखत रहना बहुते जरूरी है। मैं युवा मन ले आग्रह करूँ कि कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब ले खचित जुड़ें और ये छुट्टी मन मा कोनो तारा घरला घलो देखेला खचित जावें। संगवारी हो, मन की बात कार्यक्रम ला जेन लोगन मन टीवी मा देखत हैं, मैं वो मन ले कहूँ एक वीडियो खचित देखाओ। ये वीडियो पाछू दिन बहुते चर्चा में रहिस। एमे कुछ लोगन मन बहुत धैर्य ले बहुत सावधानी ले एक गंगा डॉल्फिन ला बचाए की कोशिश करत हैं। आप मन ले ये जान

के आश्चर्य होही। ये जम्मो प्रयास में करीबन 13 घंटा लगिस और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गईस। संगवारी हो, एमे बहुते बड़का भूमिका रहीस भारत के पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के। ये घटना उत्तर प्रदेश के है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गए रहीस। ऐसन बखत में नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बने ये एम्बुलेंस ओखर बर उम्मीद बन के पहुँचिस। फिर बहुते सावधानी ले ओला बाहर निकाले गईस, ओखर जांच करे गईस, ओखर इलाज करे गईस और ओखर बाद ओला सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दे गईस। एक रकम ले कहन त एक जिंदगी फिर अपन घर लहूट गईस। संगवारी हो, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एला एक चलत फिरत अस्पताल कस तैयार करे गे है। एमे डॉल्फिन ला सुरक्षित रखे के व्यवस्था है, ऑक्सीजन के सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। माने अगर कोनो डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी ले कट जाए तो तुरते ओखर सहायता करे जा सकत है। संगवारी हो, जब हम गंगा डॉल्फिन ला बचाथन तो हम खाली एक प्रजाति ला नहीं बचावन, हम गंगा के जैव विविधता ला बचाथन, नदी के पूरा जीवन तंत्र ला बचाथन और अपन अवैया पीढ़ी खातिर प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर घलो बचाथन। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, आप मन ले बहुत अकन लोगन के नदिया तरिया या कुआं के पानी ले जुड़े सुरता खचित होही। कोनो ला तरिया में तौरना याद होही, कोनो ला संगवारी मन संग तरिया के तीर में खेलना, कोनो ला वो माटी के सुगंध के सुरता होही। ननपन के ऐसन याद जिंदगी भर मन में बसे रही थे। संगवारी हो, ऐसने याद मन ला बचाए के एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला ले आघू में आए है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपन गांव के मनोरमा नदी ला देख के बहुत दुखी होवत रहिन। काहे कि जे नदी ला वो मन ननपन में साफ और जीवंत देखे रहिन, बखत के संग वो नदी में प्लास्टिक जमा होय लगिस, गंदगी बाढ़त चले जात रहिस। श्रीमान आकाश ह तय करिन कि शिकायत नहीं करही, एक नवा शुरुआत करही। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गईस। वो मन अपन संगवारी मन ल साथ लेन खाली जाल रहीस, रापा रहीस, झुंहा रहीस और सबले बड़का ताकत रहीस, कुछ बदले के संकल्प। ये युवा मन नदिया मा उतरत रहिन, जल कुंभी निकालत रहिन, प्लास्टिक और कचरा बाहर लावत रहिन। कईयों बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी ले निकाले गईस। धीरे धीरे मनोरमा नदी के वो हिस्सा फिर साफ दिखे लागिस। तीर तखार के लोगन मन के ध्यान घलो ये काम कोती गईस। लोगन मन में स्वच्छता ला लेके जागरूकता बाढ़िस। संगवारी हो, ऐसने एक प्रेरक कहानी गोवा ले घलो आघू आए है। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, फिर समाज भर काम करे के उनकर उछाह आज घलो वैसने हैं। उनला मड्डी तोलाब क्षेत्र में पानी के समस्या बहुत परेशान करत रहिस। वो मन घलो समाधान खातिर काम शुरू करिन। बालकृष्ण जी ह पाइपलाइन बिछाए के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन। एखर ले कईयों घर तक पानी पहुँचिस। जिन परिवार मन ला पानी खातिर रोज संघर्ष करना पड़त रहीस, उनखर बर ये बहुत बड़ा राहत बनिस। संगवारी हो, पाछू महीना मुला एक बहुते अच्छा अनुभव होइस। एखर संबंध मन की बात ले घलो जुड़े है। यही पाए के आज मैं एखर चर्चा आप मन ले करना चाहत हूँ। तमिलनाडु के नागर कोइल मा मोर भेंट एक शिक्षक ले होइस। करीबन 3 दशक पहली घलो मैं वो मन ले मिले रहे हूँ। मैं बात करत हूँ गिरिजा अम्मा जी के। ये भेंट के दौरान कुछ युवा विद्यार्थी मन घलो उनखर संग रहिन।

0: संगवारी हो, गिरिजा अम्मा जी करीबन 15 स्कूल चलाथे। एमे चेन्नई के जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनखर देशभक्ति के भावना हर भारतवासी ल प्रेरित करने वाला है। वो मन की बात ले प्रेरणा लेके देश के अनेक सैनिक मन बर योगदान के संकल्प लिए हैं। एखर बर वो मन अपन सब्बो स्कूल के विद्यार्थी मन ल प्रेरित करिन। वो मन लैका मन ले कहिन कि वो मन वीर जवान मन बर हर दिन 1 रुपया योगदान करें, माने 1 बछर मा हर विद्यार्थी कोती ले 365 रुपया जमा होइस। ये नान नान योगदान ले करीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा होइस। गिरिजा अम्मा जी हा ये पूरा राशि के चेक मोला सौंपिन। वो मन ले गोट बात के दौरान मैं महसूस करें कि माँ भारती के प्रति उनखर समर्पण कत का गहिर है। पाछू बछर चेन्नई के पहली हिंदू विद्यालय है अपन 50 बछर पूरा करे है। देश के शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव ला आगू बढ़ाए मा ये स्कूल नेटवर्क के भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं एखर ले जुड़े सब्बो लोगन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हौं और वो विद्यार्थी मन के घलो विशेष सराहना करत हौं जेन मन अपन वीर सैनिक मन खातिर योगदान दिए हैं। संगवारी हो, भारत के हर गांव मा हर शहर मा कुछ न कुछ ऐसन होवत है जेन हमन ल प्रेरणा देते। कईयों बार ये प्रयास मन के ज्यादा चर्चा नहीं होवे, फिर जब हम इन ल जानथन त ये विश्वास औ मजबूत होते कि देश अपन लोगन मन के शक्ति ले आघू बढ़ते। मोर आप मन ले आग्रह है अपन तीर तखार मा ऐसने प्रयास मन ल खचित देखाओ। जेन लोगन मन समाज खातिर अच्छा काम करत हैं वो मन ल चिन्हाओ, उनखर सराहना कराओ, वो मन ले सीखाओ और हो सके त खुद घलो कोनो अच्छा काम ले जुड़ाओ। अवैया महीना मन की बात मा कुछ औ प्रेरक गाथा मन संग मैं फिर आप मन ले जुड़ू। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। जोहार।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अब हम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
3: वीर सैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः। सखायः भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति। कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति, किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत, तेषां प्रशंसां कुरुत, तेभ्यः शिक्षां आप्नोतु। शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामी मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
4: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला इस फिल्म का गाना। गीतकार हैं पंची जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं के और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम है रूढ़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: यह आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक के को याद किया।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले

जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना। बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफ़र को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ। तो कार्यक्रम का ये है पहला गीत, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं, इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठ कर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए, बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछुओं में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछुओं प्रेमी युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र

वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है, तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे, कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा। सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं। बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं। बिछड़े सभी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगोकर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है, तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं।

हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम

करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहाँ एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहरी में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहरी में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करते ही उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है, इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो है हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है, हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं, साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए, लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग

बसा ली है। ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, यह अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को यह दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठकर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम आवाज में उनका नाम सुनाई देता है।

है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो, मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौट कर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, यह आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंधी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती। ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे इस संसार से।

ली गई थी और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

साथियों, आज 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। अलग अलग तरह से किया जाने वाला तंबाकू सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। एक शोध के अनुसार तंबाकू का सेवन करने वाले 10 लोगों में से प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की मृत्यु इससे होने वाले कैंसर या अन्य घातक बीमारियों से हो जाती है। इतने खतरनाक परिणामों को जानते हुए भी लोग इसकी लत के गुलाम बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

0: हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़ियां भी तंबाकू सेवन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू युक्त पान और पान मसाले आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मेहमान नवाजी और आवभगत के रूप में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे शौक और परंपराएं किस काम की जिनसे एक पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो जाए, जीवन पर घोर संकट आ जाए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

कृत्रिमता जो तंबाकू उद्योग के उत्पाद बेचने वाले लोग भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। चिकित्सकों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर के 90% मामले केवल कैंसर के कारण होते हैं। अपनी पत्नी के लिए, अपने वृद्ध माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को तंबाकू सेवन से खतरे में मत डालिए। आज ही और अभी दृढ़ संकल्प लीजिए, नो टोबैको, अब और तंबाकू नहीं।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में डेविड बिन का कथन है, तंबाकू का वास्तविक चेहरा बीमारी, मौत और डर है, न कि चमक और

तो साथियों, अब आज का त्रिवेणी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये कार्यक्रम विविध भारती के लिए आकाशवाणी कोटा की प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की

0: झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम करें।

0: रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचा

0: बढ़ाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने। फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल बिस्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल बिस्वास की।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम।
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे, गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव,

आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है

0: अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं। भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी, दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मनचाही गीत।
2: मनचाही गीत।
1: मनचाही गीत।

0: नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डिजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूं दो हफ्ते की छुट्टी ले लूं। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह के दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना।
3: देसी
2: छोड़ दीजिए ना।
3: अरे अरे सुनो तो।
2: नहीं सुनती।
3: ओफो, अरे बात तो सुनो
2: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
3: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
3: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
3: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: तेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की
0: ओह डेजी, माय गॉड।

0: दिन मैं सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?

0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
1: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
1: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
1: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
1: भाई, उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
1: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में नहीं।
1: तेजी,
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
1: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
1: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
1: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
1: दूसरों की नजरों में कानून के

0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
1: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
1: अपने बच्चे से माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
1: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: जब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
1: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों ने जी?
0: जी हाँ
2: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे?
2: हाँ?
0: आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
0: वो
2: सो रहा है।
0: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
1: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
1: Well, but that doesn't matter, doctor. A slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ। भाई कुछ जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके।
0: अच्छा डॉक्टर।
1: बाय डॉक्टर। बाय।
0: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
1: जब तक जरूरी होगा।
0: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
1: अपने लिए।
0: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
1: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
0: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
0: आपसे कहा था जरा बच्चे की जाँच कर लो।
1: जाँच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
0: ये क्यों नहीं कहते कि आप जाँच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
1: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
0: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
1: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
0: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
1: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
0: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
0: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी के साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
0: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
0: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के इस फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा। ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
0: मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी।

0: दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
1: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
0: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक एक शंका दूर करनी है।
1: कैसी शंका?
0: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
1: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं।
0: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो, नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो, क्या हुआ?
0: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मेरे पर एक कृपा कीजिए।
1: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ डॉक्टर रामदास,
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे

0: बच्चा चल बसाना
1: जी।
0: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रेस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
2: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को इस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
0: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
2: समझा नहीं?
0: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
2: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
0: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
2: डॉक्टर।
0: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
2: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
0: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
2: स्टॉप दिस नॉनसेंस, आई से डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
2: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझकर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
2: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ, एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
2: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
2: नो नो नो,
0: क्यों डॉक्टर, सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया, क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाथ क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
2: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
2: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
2: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
2: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
3: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
2: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
3: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
2: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
3: लॉरेंस, तुम अचानक,
2: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही,

0: तो मैंने कितनी तकलीफ दी।
1: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा। कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
1: मैं भी तुम्हें
0: डेजी, जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
1: भुला दूंगी।
0: हाँ,
1: हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: हाँ, वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
1: हाँ हाँ मैं अभी लाती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डिजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: डेजी,
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: डेजी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकेंगे।
0: नहीं नहीं, डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ।
0: नहीं नहीं, डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे, ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: डेजी, ये मेरी नसें टूट रही है। डेजी, डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
1: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो बेटा, करो बेटा, भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा।

0: और जेल की एक कोठरी, की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।

0: बलिदान की।
1: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
1: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिक

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
1: जी,
2: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
1: जी,
2: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना हो। तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
1: जी।
2: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका।
1: जी बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में।
2: जी,
1: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
2: मैं तो अच्छी हूँ
1: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
2: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
1: अच्छा,
2: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हिंदी भाषा के, मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
1: जी,
2: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
1: अच्छा जी।
2: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
1: रखते
2: हैं।
1: ही हैं।
2: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
1: अच्छा,
2: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
1: जी बिल्कुल,
2: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए। ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति, डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला।

0: तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था,
1: जी
0: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे,
1: अच्छा जी
0: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे। उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा, तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे,
1: जी
0: रावल जी,
1: अच्छा
0: और उन्होंने उनको सुना। उन्होंने जाकर के हिमांशु राय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने, और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में।
1: जी
0: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूं भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया, अपनी शैली में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई, और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में ये लिखे। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
1: अच्छा
0: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में, और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए। हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूं, मैं तो कवि हूं, और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा, और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो अलग तरीके का जो एक राइटिंग है, तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया, और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार बन
1: गीतकार
0: गए।
1: बन गए थी। कौन
0: तो
1: से
0: अब
1: सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया
0: जो
1: गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूं मैं
1: जी
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप,
1: प्रदीप।
0: तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना, और तो कवि प्रदीप कैसे हुए। उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार,
1: जी
0: एक्टर।
1: एक्टर
0: तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो, तो कवि प्रदीप अलग हो गए,
1: और
0: प्रदीप
1: प्रदीप
0: कुमार
1: कुमार
0: अलग हो गए। तो ये
1: अलग
0: आपके सवाल का जवाब है।
1: हो गए। तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना,
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की
1: हेमंत
0: आवाज में।
1: कुमार की आवाज में।
0: ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये
0: हाँ
1: प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कभी प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था?
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का फर्क था दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज़्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
0: जाना
1: थी।
0: हुआ जी।
1: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
0: जी
1: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
0: और सिद्धांतवादी।
1: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया। हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
0: जी
1: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था, तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे। लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
0: इतनी फ्रीडम थी
1: फ्रीडम। हाँ,
0: जी।
1: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए ज़िंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज़ करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफ़ी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना?

0: मन में कोई कुंठा नहीं
1: नहीं
0: थी
1: थी जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
0: बहुत बहुत बहुत सारी
1: जी।
0: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफ़ी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
1: जी।
0: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूँगा,
1: अच्छा।
0: हाँ मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ
1: अच्छा
0: लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
1: अरे हाँ।
0: तो उन्होंने बोल दिया माँ पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था, अरे नारायण जी आप आए हैं आइए। बोलते माफ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी।
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी।
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए, और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन
1: हाँ,
0: था
1: वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी। तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
0: एक
1: उस
0: पानी बन के
1: दांपत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है जी।
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह,
0: मतलब
1: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल।
1: है ना? ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे,
0: थी
1: वो सब पता चलने लगा।
0: जी।
1: और खैर, वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह वो
1: पिता की
0: रहे
1: तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा, कि
0: जी
1: कोई
0: जी
1: स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने
0: लिखाई
1: की
0: थी
1: शक्ति
0: जी, बिल्कुल
1: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण।
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर
1: जी
0: दिखाया।
1: जी
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो

0: पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊ जी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था। और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
1: जी
0: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये कोई
1: मतलब स्व
0: जानबूझ के नहीं
1: प्रेरित
0: हुआ।
1: हुए क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था,
0: हाँ
1: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
0: हाँ
1: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
0: हाँ और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
1: जी
0: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे। हाँ
1: अच्छा
0: तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
1: हाँ,
0: और
1: तब
0: फिर
1: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
0: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
1: जी
0: मुंबई।
1: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान।
0: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त।
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन
1: जी जी
0: यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त
1: उसी
0: लिखी।
1: दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां से
0: हुआ।
1: वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मित्तुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज
1: जी
0: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: Durano, Durano, Durano.
1: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
2: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
1: जी
2: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
1: जी
2: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि ये कवि को पकड़ो, इसको
1: बिल्कुल
2: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान,
1: जी
2: माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
1: भूमिगत कर दिया।
2: भूमिगत, भूमिगत तो भूमिगत हो गए। तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे, वो वहाँ पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे।
1: जी
2: उन्होंने कहा कि आप लोग, ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे

0: स्टाफ नहीं है, तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो वो बात
1: जी
0: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों
1: क्योंकि
0: की जंग, और वो
1: हाँ
0: शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे, और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता
0: और
1: है।
0: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान

0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात
1: जी
0: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ी गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों
1: क्योंकि
0: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो है हिलोरे लेने लग जाता
0: और
1: है।
0: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
1: जी
0: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
1: कश्ती
0: निकाल
1: निकाल
0: के,
1: के,
0: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी। सबसे बड़ी बात
0: सही
1: ये
0: बात।
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के
1: कोई
0: सिवाय वो पूरी नहीं
1: गाना जी
0: होती।
1: बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं, मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर,
0: जी,
1: और वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील
1: तो भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गांव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते

0: वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत। वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे, तो
1: जी
0: ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी। रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए, तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
1: जी
0: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
1: नहीं है,
0: सारे गामा नहीं है,
1: कॉपी की भी नहीं है।
0: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है। ठीक है, तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
1: जी
0: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
1: बिल्कुल।
0: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछी रे, आज भी पिंजरे के पंछी रे सुन के भी लोग रोते हैं
1: बिल्कुल, वो
0: कि
1: दर्शन
0: एक
1: जो
0: छोटे
1: उन्होंने
0: पिंजरे में
1: दिया।
0: पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे
1: अध्यात्म के
0: संसार
1: गीत
0: की
1: हुए।
0: हालत क्या हो गई,
1: हाँ
0: भगवान
1: हाँ
0: कितना बदल गया इंसान। हाँ, और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी,
1: देखी
0: हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको
1: मुखड़ा
0: क्या
1: देख ले
0: बताऊं,
1: दर्पण में।
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में, तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक है,
1: सीरीज है उनके पास, और आज
0: हाँ,
1: भी उनके
0: सुनते हैं लोग,
1: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
0: सुनते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
0: पिंजरे के पंछी सुनिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना, समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे, या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहाँ पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ
0: जी।
1: तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा।
1: जी
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो, या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाग करे चतुराई,
1: चतुराई
0: कर्म का लेख मिटे
1: मिटे
0: ना
1: ना
0: रे
1: रे
0: भाई,
1: भाई।
0: जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता
0: जीवन
1: है और अपने
0: दर्शन
1: मन को हम समझा लेते हैं
0: समझा
1: कि
0: लेते
1: अच्छा
0: हैं।
1: इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, तो
0: हाँ,
1: हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
0: कर्मों
1: सब
0: में कुछ
1: लिखा
0: गई।
1: है तो
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
1: वाले।
0: तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को, हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: अब हो।
1: दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपने ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
2: कहां से लाई हो।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती है।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की। जहां उठना बैठना बात करना लोगों के मन को लुभाता है, वहीं चलना भी एक अदा है। ऐसी मतवाली चाल जिसे देखकर कोई

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक शायर ने ये

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे।
1: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्त

0: दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। इस कार्यक्रम में आज सुनिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है संजय मानिकपुरी का।
2: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू की अध्यक्षता में बीते 25 मई को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एग्रीस्टेक पंजीयन का काम जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें आगामी खरीफ सीजन में धान बेचने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे 15 जून तक अपना पंजीयन अवश्य करा लें। बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्रोताओं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में डायल 112 सेवा के तहत 10 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस वाहन प्रदान किए गए हैं। बीते 19 मई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक कविता प्राण लहरे और कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि 1 के नंबर सबो बर थीम पर शुरू की गई ये सेवा लोगों को त्वरित और आपातकालीन स्थिति में सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वाहनों में जीपीएस सिस्टम, डैश कैमरा, वायरलेस रेडियो और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इससे कंट्रोल रूम सीधे घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेगा। श्रोताओं, राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण की चयन सूची 16 से 22 जून तक जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की चयन सूची 26 जून से 3 जुलाई और तीसरे चरण की चयन सूची 8 से 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। श्रोताओं, सुशासन तिहार के तहत इन दिनों जिले में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

0: इसी कड़ी में बीते 28 मई को केडार गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 हितग्राहियों को आवास पूर्णता का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं हितग्राहियों को श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उन्नत बीज तथा हरी खाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में 5 लखपति दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में मांग और समस्याओं से संबंधित 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। श्रोताओं, उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सारंगढ़ नगर पालिका परिषद बस स्टैंड में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों के अनुरूप ये राशि अधोसंरचना मद से स्वीकृत की गई है। इस राशि में बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। श्रोताओं, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 1 से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र छात्राओं को एथलेटिक्स, योगा, कराते, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित विभिन्न खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने पसंदीदा खेल जरूर खेलें। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें, साथ ही उन्हें मोबाइल गेम और मोबाइल की लत से दूर रखें। खेल प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था संजय मानिकपुरी का। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में मिले दुर्लभ तांबा पट्टिका के करिन जिकर, जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर ले घलो करिन बात। मुख्यमंत्री कहिन की प्रदेश में खातु औ बीजा के कोनो कमी नहीं हवे औ प्रदेश में नगरी निकाय औ त्रिस्तरीय पंचायत के आम औ उपचुनई में काली 1 जून के होही मतदान। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिन है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहर ल बचाए बर प्रयास करत है। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में ओमन बतैन कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन ले जुड़े दुर्लभ तांबा के 3 ठिन पट्टिका मिले हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री रांची में रखे गए राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के घोईटांगर रहिया 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले अनिमेश कुजूर ले बात घलो करें।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: श्री मोदी देशवासी मल्ले ए दारी जोरदारहा गर्मी के दौरान ज्यादा ले ज्यादा सावधानी

रखे और सरकारी दिशा निर्देश के पालन करे के अपील करेन। ओमन किहिन की ए मौसम में पानी पियत रहे और घाम में अगर निकलना ही पड़े तो थोरकुन जतन करके निकले। प्रधानमंत्री हा लोगन ले गर्मी ले बाचे बर आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और साले कढ़ी जैसन पेय पिए के अपील करीन हैं। श्री मोदी हा किहिन की खगोल विज्ञान हा देश के हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगात है। खगोल विज्ञान हा देश में तेजी ले लोकप्रिय होत है। ओमन युवा मन ले खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होए और छुट्टी में तारा मंडल देखे के अपील करीन। प्रधानमंत्री हा काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर के आम फल के गोट बात करत हुए किहिन की सबो जगह के आम के स्वाद और सुगंध अलग अलग होते। श्री मोदी हा किहिन की भारतीय आम हा दुनिया के बाजार तक अपन पहुंच बनाए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और आम लोगन संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात ला सुनेन। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हा किहिन की आज प्रधानमंत्री हा जशपुर जिला के घुईटांगर गांव के युवा धावक अनिमेश कुजूर के उपलब्धि के बारे में बात करत हुए प्रदेश के युवा मन ला यही संदेश देहे कि कम संसाधन हा प्रतिभा के उड़ान ला रोक नहीं सके। ओमन किहिन की प्रधानमंत्री हा राष्ट्रीय मंच ले प्रदेश के प्रतिभा और सांस्कृतिक धरोहर दोनों के बात करके पूरा छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाए है। सुनिया मल्ला बता दें कि अनिमेश कुजूर हा 100 मीटर दौड़ ला सिर्फ 10.15 सेकंड में पूरा करके नवा रिकॉर्ड बनाए हैं और राष्ट्रमंडल खेल 2026 बर क्वालिफाई घलो हो गए है। खेत बचाओ अभियान देशभर में काली 1 जून ले 30 जून तक चलिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा किहिन है कि खेत बचाओ अभियान में खेत, किसनहा और गांव मल्ला जोड़त हुए एला बड़का देशव्यापी अभियान बनाए जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री हा नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान के तैयारी के बारे में एक ठिन बड़का बैठका के अगुवाई करत हुए ए बात किहिन। ओमन किहिन की ए अभियान के मुख्य ध्यान खातु के संतुलित और सही उपयोग, मौसम के चुनौती ला देखत हुए किसनहा मल्ला सही बेरा में परामर्श, पंचायत स्तर में किसान मन के सक्रिय भागीदारी और गांव ला सीधा ये योजना ले जुड़े ऊपर ध्यान होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा सुशासन तिहार में आज दुर्ग जिला में रखे गए कार्यक्रम में 737 करोड़ रुपया के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करें। ए मौका में मुख्यमंत्री हा किहिन की ए सबो परियोजना हा क्षेत्र में नागरिक सुविधा के विस्तार और विकास ल आखिरी आदमी तक पहुंचाए के हमर सरकार के संकल्प ल और ज्यादा बल दही। मुख्यमंत्री हा आज दुर्ग में आईटी पार्क के उद्घाटन घलो करें। आईआईटी भिलई, नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग ले बने ए आईटी पार्क है युवा मन बर रोजगार, नवा प्रयोग और स्टार्टअप के नवा मौका के ठीहा बनी। इही मौका में पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए मुख्यमंत्री हा किहिन की प्रदेश में खातु और बीजा के कमी नहीं हवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।

0: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता अउ खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव में काली 1 जून के मतदान होही। राज्य निर्वाचन आयोग ह मतदान बर सबो तैयारी पूरा कर ले है। ए चुनाई बर सनिच्चर रतिहा 12 बजे प्रचार थिरागे है। एकर बाद प्रत्याशी मन घर घर जाके मतदाता मन ले भेंट करत है। सुनिया मल्ल बता दन कि नगरी निकाय में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत में कुल 392 प्रत्याशी मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनई में नाम वापसी होय के बाद पंच के 640 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गए रहिस, जेखर बाद काली 1 जून के 107 पद पर वोटिंग कराए जही। उन्हें सरपंच के 15 पद ऊपर निर्विरोध निर्वाचन हो गए है और अब बाचे 34 पद पर मतदान होही। एकरे जैसन जनपद सदस्य के 10 पद पर वोटिंग होही। नगरी निकाय चुनई के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष के 5 पद पर मतदान

0: वही नगरी निकाय चुनई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के माध्यम ले और पंचायत चुनई में मतपेटी के माध्यम ले वोट डारे जही। कोरबा जिला में काली संझा 3 युवक मन ऊपर पेड़ के डारा गिर गए, जेखर ले तीनों जन के मौका में ही मौत हो गए। बताया जावत है कि पाली थाना क्षेत्र के चोरका डांड गांव में पानी और तेज हवा ले बांचे बर ए तीनों जन यह पेड़ के तरी खड़े रहिन। इसी दौरान तेज हवा गर्रा के कारण पेड़ के एक हिस्सा हर टूट के सीधा उही ऊपर गिर गए, जेमा दब के तीनों जन के मौत हो गए। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस हवे। ए मौका में छत्तीसगढ़ के आने आने जिला में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करे जावत है। रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली पोस्टर और रील प्रतियोगिता रखे गई। संगे संग दांत के डॉक्टर मन है लोगन ल तम्बाकू खाए ले होवैया नुकसान के बारे में घलो बताइन। उन्हें समाज कल्याण विभाग के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ह प्रदेशवासी मन ले तम्बाकू और आने नशीला सामान ले दूरिया रहे के अपील करे है। ओमन किहिन की तंबाकू हा मनखे के तबियत के संगे संग परिवार और समाज तीनों बर बड़का खतरा है। युवा मल्ला नशा ले बचाए बर समाज के सब्बो वर्ग ल मिलजुल के काम करना होही। अब थोरकुन समाचार सार मा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा आज कबीरधाम जिला के रामहेपुर गांव में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जयंती समारोह में शामिल होइन और कबीरधाम जिला के बैहरसरी गांव ले एक युवक के हत्या के मामला में पुलिस ह 3 आरोपी ले गिरफ्तार करे हे। आखिरी में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ह छत्तीसगढ़ में ज्ञान भारतम अभियान के तहत मल्हार में मिले दुर्लभ तांबा पट्टिका के करिन जिकर, जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर ले घलो करिन बात। मुख्यमंत्री ह किहिन की प्रदेश में खातू और बीजा के कोनो कमी नहीं हवे और प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनई में काली 1 जून के होही मतदान। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गैंगस्टर से। आवाज़ें अभिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की है। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीत दिया है प्रीतम ने।

लीजिए अब सुनिए फिल्म दुश्मन से अगला गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म कहो ना प्यार है का गीत। संगीत निर्देशन राजेश रोशन का है और गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने।

लीजिए सुने किशोर कुमार की आवाज़ में अनुरोध फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चित्रपट संगीत की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। आवाज़ है किशोर कुमार की।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:48

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिले दुर्लभ तांबे की पट्टिकाओं का किया जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है और प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बल्लार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के घुईन टांगर निवासी 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले अनिमेश कुजूर से भी बात की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और आमजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज जशपुर जिले के घुईन टांगर गांव के युवा धावक अनिमेश कुजूर की

0: उपलब्धि का उल्लेख कर प्रदेश के युवाओं को यह संदेश दिया है कि सीमित संसाधन किसी प्रतिभा की उड़ान को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मंच से प्रदेश की प्रतिभा और सांस्कृतिक धरोहर दोनों का उल्लेख कर पूरे छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाया है।
1: बड़ी खुशी की बात है कि कई बार के मन की बात में छत्तीसगढ़ का लगातार जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है। एक तो जिस जिले से हम आते हैं जसपुर, वहां के अनिमेश कुजूर हैं, लेकिन उड़ीसा से वो खेलते हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर और 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो मल्हार है वहाँ का जो ताम्रपत्र है उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: गौरतलब है कि अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ मात्र 10.15 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए क्वालिफाई कर प्रदेश तथा देश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत आज दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में 737 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सरकार के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री ने आज दुर्ग में आईटी पार्क का उद्घाटन भी किया। आईआईटी भिलाई नगर निगम और राज्य सरकार के सहयोग से निर्मित यह आईटी पार्क युवाओं के लिए रोजगार, नवाचार और स्टार्टअप के नए अवसरों का केंद्र बनेगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है।
2: प्रदेश में कहीं भी न बीज की न खाद की कमी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और चूंकि डीएपी वगैरह की उपलब्धता बाहर से होती है, उतना पैदावार नहीं है हमारे देश में कि मतलब पूर्ति कर पाए। कहीं अगर कमी हुई है तो वो स्टॉक की कमी के कारण नहीं, वहाँ पर पहुँच नहीं पाया होगा। और जैसे जैसे लगातार रोज की रोज समीक्षा कर रहे हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों से आह्वान करना चाहूँगा कि उनको किसी भी दृष्टि से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खेत बचाओ अभियान देश भर में कल 1 जून से 30 जून तक चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। देश भर में इन दिनों जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है। प्रगणकों के घर घर जाकर 33 प्रश्नों के आधार पर मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संकलित की। राज्य में यह अभियान 33 जिलों, 252 तहसीलों, 195 नगरी निकायों और 19,000 से अधिक गांवों में चलाया गया। जनगणना कार्य में 62,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रदेश के जनगणना निदेशक ने अभियान की सफलता के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। गौरतलब है कि जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इन चुनावों के लिए शनिवार रात 12 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगरी निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंच के 640

0: इस पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है। शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मत पेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। कोरबा जिले में कल शाम 3 युवकों पर पेड़ का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पाली थाना क्षेत्र के चोर का दान गांव में बारिश और तेज हवाओं से बचने के लिए ये 3 युवक एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान तेज आंधी के कारण पेड़ का एक हिस्सा टूटकर सीधे उनके ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर 3 युवकों की मौत हो गई। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली, पोस्टर और रील प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छात्रों ने तंबाकू निषेध का संदेश दिया, साथ ही दंत चिकित्सकों ने लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया। वहीं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज नवा रायपुर में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर की गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिकों से प्रदर्शनों और प्रभावी विस्तार तंत्र के माध्यम से नई विकसित कृषि प्रौद्योगिकी को खेतों तक स्थानांतरित करने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के ग्राम रामहेपुर में आयोजित लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती समारोह में शामिल हुए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद आज आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक का शव रखकर चक्का जाम किया। और कबीरधाम जिले के ग्राम बहर रसरी में से एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में मिले दुर्लभ तांबे की पट्टिकाओं का किया जिक्र। जशपुर के धावक अनिमेश कुजूर से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूरा कर लिया गया है। और प्रदेश में नगरीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत कल 1 जून को होगा मतदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: जय माला।

0: सैनिकों की शौर्य गाथा महावीर चक्र।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। जब हम प्रकृति से मिले उपहारों की बात करना चाहते हैं तो खुद को बेहद सीमित पाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास जो भी है वो सब प्रकृति का ही तो है। कुछ यही भाव हम अपने सैनिकों के लिए भी मन में महसूस करते हैं। देश के इन वीर जवानों के लिए कुछ कहते हुए जैसे बड़े से बड़ा शब्द छोटा मालूम होता है। इनकी वीरता, साहस, निस्वार्थ भावना के लिए दुनिया भर की सारी उपमाएं घुटने टेकने को तैयार नजर आती हैं। उस पर हमारे वीर सैनिक विनम्रता से मुस्कुराकर हमारी किसी छोटी सी मुस्कान, एक सैल्यूट, एक अभिवादन को पूरे स्नेह से स्वीकार कर हमें उत्साह से भर जाते हैं। आज हम एक ऐसे वीर सैनिक की गाथा लिए आए हैं जिनका सीना सेना की ओर से मिले सम्मानों से लदा हुआ है, लेकिन इन सम्मानों की आभा से ज्यादा उनके चेहरे पर विराजती है एक विनम्रता भरी मुस्कान। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी उर्फ जोरू।

लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी, जिन्हें फौज में उनके साथी प्यार से जोरू और जूनियर कैप्टन जोरू के नाम से बुलाया करते थे, ये कहा जा सकता है कि मातृभूमि से प्रेम की भावना उनकी रगों में दौड़ती थी। पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सम्मानित सैनिक रहे। जनरल जोरू अविभाजित भारत में जन्मे। पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ साल 1921 में। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हर वो व्यक्ति याद करता है जो उनसे एक बार भी मिला हो। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने स्नातक की उपाधि हासिल करने के बाद देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिल

देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। जनरल जोरावर सिंह बख्शी ने अपना पहला युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ा। यहाँ वो एक पैदल सेना में शामिल थे, लेकिन अपनी भारी किलेबंदी रणनीति के कारण स्थिति पर काबू पाया और उन्हें एक यादगार के तौर पर डिस्पैच में उल्लेख हासिल हुआ। इसके बाद अपने कार्यों से उन्होंने मेजर की उपाधि हासिल की। भारत विभाजन के बाद लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी भारतीय सेना की 5वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का हिस्सा बने। ये एक ऐसी रेजिमेंट रही जिसने जनरल बख्शी के दिल में अपनी जगह बनाई रखी। इस रेजिमेंट का हिस्सा बने हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने अपनी वीरता का परचम लहराया। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी सेना के सबसे सम्मानित जनरल्स में से एक रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य भी हो सकता है कि साल 1962 के युद्ध के अलावा उन्होंने देश के तकरीबन हर युद्ध में अपना योगदान दिया। वो जब मैदान में आ जाते तो हर एक के चेहरे पर मुश्किल वक्त में भी मुस्कान आ जाती। जनरल बख्शी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा कि उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वो जब भी किसी युद्ध का हिस्सा बनते तो अग्रिम पंक्ति में होते। उनके साथी बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी दुश्मनों के सामने एक अलग ही रूप में हुआ करते। बाद के वर्षों में जब वो जम्मू सीमा में तैनात थे तब उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 2 एस्कॉर्ट जीप दी गई, तो भी वो उसका उपयोग नहीं किया करते बल्कि एक खुली कार में तिरंगा लहराते हुए यात्रा किया करते। ये एक बेहद जोखिम भरा काम हुआ करता था क्योंकि हमले का खतरा हर पल बना होता, लेकिन जनरल बख्शी ये कहते कि इस काम से सेना में जोश का संचार तो होता ही, साथ ही वो दुश्मनों को ये संदेश भी दिया करते कि दुश्मनों का सामना एक शेर दिल से है।

आज हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की। इस सम्मान के मिलने का किस्सा जितना साहस, वीरता और जोश से भरा हुआ है, उस जोश की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के जीवन में बहुत पहले से हो गई थी, जब उन्होंने अपने रण कौशल से विभिन्न सम्मान अर्जित किए। बात साल 1947-48 की है, जब पड़ोसी देश के साथ युद्ध का हिस्सा बने जनरल बख्शी ने मुख्यालय में एक स्टाफ अधिकारी होते हुए भी अपनी वीरता का ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आमतौर पर स्टाफ कर्मचारियों के द्वारा ऐसी वीरता कम ही देखी जाती है, पर कहते हैं ना कि वीर की वीरता और साहस सही वक्त पर सामने आ ही जाते हैं। वीरता प्रदर्शन की चीज नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा गुण है जिसकी चमक हर ओर फैलती है और इसकी रोशनी से भय का अंधकार मिट जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के नाम एक ऐसा सम्मान भी है जो भारत की आजादी के बाद पहली बार किसी को मिला। ये पदक है मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल। ये सम्मान उन सैनिकों को मिलता है जो देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सेना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस दौरान उन्हें अपनी पहचान छुपाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करनी होती हैं। ये एक कठिन यात्रा होने के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी से भरा काम होता है। इस सम्मान को हासिल करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी पूरी तरह से हकदार रहे। जब उन्हें रणनीतिक सैन्य टोही का काम सौंपा गया तो उन्होंने तिब्बत की यात्रा की, हिमालय के कई ऊंचे दर्रों को पार किया, तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी तय की और अपना लक्ष्य हासिल किया। इस काम के लिए वो 80 दिनों तक एक तिब्बती भिक्षु के भेष में रहे। देखा जाए तो एक भिक्षु और सैनिक विरोधाभासी होते हुए भी एक से होते हैं। दोनों ही स्वयं के प्रति निर्मोही होते हैं और अपने लक्ष्य पर एकाग्रता रखते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति कुछ ऐसी ही एकाग्रता बनाए रखने वाले वीर सिपाही रहे लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा। के सबसे सम्मानित जनरल्स में से एक लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और वीरता के कई प्रतिमान सीने पर सजाए आगे बढ़ते रहे। महावीर चक्र, वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, सैन्य सेवा पदक जैसे तकरीबन 20 सैन्य सम्मान उनका मान बढ़ाते रहे। हालांकि उन्होंने अपने इन सम्मानों से अपना सीना चौड़ा किया, पर इसे सिर पर चढ़ने नहीं दिया। उनका सिर मातृभूमि के लिए हर पल विनम्रता से नतमस्तक ही रहा। कहा जाता है जो वृक्ष फलों से लदा होता है वो विनम्रता से झुक ही जाता है। कुछ यही गुण लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी के व्यक्तित्व में भी नजर आता है। एक ओर दुश्मनों के सामने वो फौलाद बनकर खड़े होते हैं और दूसरी ओर अपने साथियों के लिए इतने नरम कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा उनका कायल हो जाए।

युद्ध क्षेत्र में अपना परचम लहराना हर सैनिक का सपना होता है। देश की माटी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से भी हमारे वीर सैनिक पीछे नहीं हटते। जहां युद्ध मैदान में उपस्थित होना आवश्यक है, वहीं जरूरी है नए सैनिकों को उचित प्रशिक्षण देकर तैयार करना। लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने यहां भी अपनी भूमिका निभाई। 50 के दशक में वो कुछ समय के लिए प्रशिक्षक के रूप में काम करते रहे। ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ही तरह कई बहादुर सैनिकों को तैयार किया होगा। यही नहीं, उनकी विनम्रता के कुछ अंश भी जरूर उनके विद्यार्थियों में आए होंगे। किसी वृक्ष की छाया में जो बीज अंकुरित होते हैं, उनमें वृक्ष के कुछ अंश आते ही हैं। कई बार वृक्ष से लिपटी बेलें वृक्ष के सानिध्य में अपना गुण भी बदल लेती हैं। एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य भी अपनी क्षमता को बढ़ा हुआ पाते हैं। बतौर प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने कुछ दिनों तक अपनी सेवाएं दी और जल्द ही एक बार फिर युद्ध क्षेत्र से उन्हें बुलावा आ गया। एक सच्चे सैनिक की यही निशानी होती है कि वो केवल वीरता की डींगे नहीं हांकता, बल्कि उसे जीवंत कर दिखाता है।

0: वीरता और साहस से भरी ये शौर्य गाथा जारी रहेगी इस अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा। यहाँ इस बात का उल्लेख करना लाजमी है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी अपनी रणनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। उनकी एक बेहतरीन रणनीति का उदाहरण है हाजी पीर की जीत, जिसने आगे जाकर देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी विस्तार से बात करें उसके पहले यहाँ जिक्र करते हैं प्रसिद्ध चिकन नेक की, जिसे ये नाम जनरल बख्शी ने ही दिया। ये जगह चिनाब नदी और उसके आसपास फैला एक लंबा क्षेत्र है। इससे कुछ ही दूर पर अखनूर पुल मौजूद है, जो सेना के लिए यातायात का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगह की जितनी उपयोगिता है उतना ही खतरा यहाँ बना रहता है। दुश्मन देश ने इस स्थान का नाम खंजर रखा हुआ था, जिसका कारण यहाँ के खतरे से ही था। भारतीय सेना के लिए इस स्थान से गुजरना खंजर की धार से गुजरने जैसा हुआ करता। लेकिन साल 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने इस स्थान का नाम बदलकर चिकन नेक किया और कहा कि यह स्थान उसी तरह से सेना के कब्जे में आएगा जैसे एक मुर्गी का बच्चा आ सकता है। इस नाम से ही उन्होंने अपने साथियों के मन में ये बात बिठा दी कि इस इलाके को कब्जे में करना इतना

मुश्किल नहीं है, जबकि मामला इसके विपरीत था। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने जो बात कही थी उसे कर भी दिखाया। मात्र 48 घंटे के अंदर इस क्षेत्र में तिरंगा शान से लहरा रहा था। सेना का मनोबल ऊंचा हो चुका था। जनरल बख्शी ने कुछ इसी तरह का साहस और पराक्रम दिखाया था हाजी पीर पास को अपने कब्जे में लेने के दौरान भी।

लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी ने साल 1965 में सेना के सबसे महत्वपूर्ण, शानदार और सफल अभियानों में से एक ऑपरेशन बख्शी का नेतृत्व किया। इस ऑपरेशन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था। उन्होंने न सिर्फ इसका नेतृत्व किया बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये लक्ष्य था 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हाजी पीर पास पर देश का झंडा लहराने का। हाजी पीर दर्रा सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये देश में घुसपैठ करने का एक प्रमुख प्रवेश मार्ग बना हुआ था। साथ ही पूंछ और उरी के बीच एक सुगम रास्ता भी था। हाजी पीर दर्रा तीन ओर से पहाड़ों से घिरा है, पूर्व में बेदौरी, पश्चिम में संक और दक्षिण पश्चिम में लेड वाली गली। हाजीपीर तक पहुंचने के लिए इन तीनों पोस्ट पर कब्जा जमाना बहुत जरूरी था। ऐसे में दुश्मनों की नजर से बचना आसान काम नहीं था। एक रणनीति तय की गई जिसके तहत दो तरफा अभियान चलाया गया, पहला उरी से हाजीपीर पास तक और दूसरा पूंछ से हाजीपीर पास तक। अनुमान था कि इस दो तरफा हमले से दुश्मन को भाग निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उरी से हाजीपीर जीतने के लिए 5 इन्फेंट्री बटालियन ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में आगे बढ़ी। इस अभियान को नाम मिला ऑपरेशन बख्शी। ऑपरेशन बख्शी और ऑपरेशन फौलाद को सफल बनाने के लिए सेना निकल चुकी थी। ब्रिगेडियर बख्शी का अनुमान था कि विरोधी सेना तकरीबन 3.5 बटालियन के साथ उनकी राह देख रही है। उन्होंने बाएं से उरी, संक, लेड वाली गली फतह करते हुए हाजीपीर पहुंचने की योजना बनाई, तो दाएं से उरी, बेदौरी, कुटनार दी गली, किरण होते हुए हाजीपीर पहुंचने की योजना थी। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के साथ दूसरी ओर से सेना का नेतृत्व मेजर रणजीत सिंह दयाल के हाथ में था। ये पूरा मिशन 3 फेज में होने वाला था और 26 अगस्त को हाजीपीर पास पहुंचने की योजना थी। ये सारा अभियान रात के अंधेरे में करने की योजना बनाई गई, लेकिन पहाड़ी इलाके में योजना आपके अनुसार नहीं, प्रकृति के अनुसार चलती है। मौसम बिगड़ने के कारण कुछ देरी होती गई और एक दिन की देर हो गई। भारी बारिश के कारण, संक तक धीमी गति से पहुंचने के कारण रात के अंधेरे में पहुंचने की योजना दिन के उजाले में तब्दील हो गई। दुश्मन भारी हथियारों के साथ तैयार था। सेना को देखते ही हमला बोल दिया गया। सामना करते हुए हमारी सेना ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में आगे बढ़ती गई और एक निश्चित दूरी पर पहुंचकर जवाबी हमला किया गया। आखिरकार

0: सफलता ने भारतीय सेना के कदम चूमे।
1: संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवन।

ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी के नेतृत्व में हाजी पीर की ओर बढ़ती सेना ने संक पर कब्जा कर लिया था। दूसरी ओर से भारी हमले का सामना करते हुए जवाबी हमला करके आखिरकार सर और लेडवाली गली पर भी तिरंगा फहरा दिया गया, जहां एक ओर ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी और मेजर रणजीत सिंह हाजी पीर की ओर कूच करने को तैयार थे, वहीं दूसरी ओर से आती सेना अभी पहुंची नहीं थी। लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए अब आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी ने सेना को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। अब दुश्मन से सीधा सामना था। तकरीबन 1220 मीटर की चढ़ाई सामने थी। भारी बारिश का सामना करते हुए सेना आगे बढ़ी जा रही थी। ये एक मुश्किल मिशन था, क्योंकि पूरी पलटन 2 दिन से भी ज्यादा समय के लिए इस तरह की परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ी। तभी दुश्मन को भनक लगी और उसने हथियारों के मुंह खोल दिए। सेना ने जवाबी हमला कर उन्हें शांत कर दिया। तब तक शाम ढल चुकी थी और हाजी पीर तक अंधेरे में ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी और मेजर रणजीत सिंह दयाल के साथ सेना मुख्य लक्ष्य हाजी पीर पास की ओर बढ़ रही थी। एक बड़ी चढ़ाई करने के बाद अब हाजी पीर तक पहुंचने के लिए रात का समय चुना गया। साथ ही एक और रणनीति बनाई गई और दुश्मन को दोनों ओर से घेरने के लिए पलटन को विभाजित किया गया। जैसे ही दोनों ओर से सेना हाजी पीर पहुंची, दुश्मन के होश उड़ गए। हड़बड़ी में उसने वार करने की कोशिश तो की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर 28 अगस्त को हाजी पीर दर्रे पर भारतीय झंडा शान से लहरा रहा था। ये एक बड़ी रणनीतिक जीत थी, क्योंकि इससे घुसपैठ की गतिविधियों पर तो लगाम लगा ही, साथ ही भारतीय सेना के लिए आवागमन आसान हो गया। जहां पहले पूंछ से उरी के बीच सड़क की दूरी 282 किलोमीटर थी, वो अब मात्र 56 किलोमीटर में सिमट गई। बसाली, हाजी पीर दर्रे और कहुता पर कब्जा करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ब्रिगेडियर जोरावर चंद बख्शी व्यक्तिगत रूप से सभी का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहे। दुश्मन के तीव्र गोलाबारी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वो सबसे आगे बने रहे। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और हर परिस्थिति में त्वरित कार्यवाही करने की क्षमता का ही नतीजा रहा कि सैनिकों में भी साहस का संचार हुआ। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

ने सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

सेना में आगे भी अपनी सेवाएं देते हुए ऐसे कई उदाहरण पेश करते हुए कई सम्मान प्राप्त करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जोरावर चंद बख्शी सेवानिवृत्त हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें वैधानिक सेवानिवृत्ति आयु से आगे तकरीबन 3 वर्ष का विस्तार भी दिया गया। 24 मई 2018 को वो परिवार के सदस्यों के बीच मातृभूमि में लीन हो गए। ऐसे बहादुर सिपाही विरले ही होते हैं। हम उनके सामने नतमस्तक हैं।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साज और आवाज़।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम हम हमारे प्राइमरी चैनल से रिले करते हैं।
1: छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण।
2: मोर देश के मयारुक रहवैया हो, जोहार। मन की बात मा एक घाव फेर आप मन ले जुरिया के मोला बहुते खुशी होवत हे। देश के आने आने हिस्सा मा हमर देश के लोगन मन देश हित मा समाज हित मा ऐसन अद्भुत काम करत हैं, और जब उनखर विषय मा सुनथन ता हमन ला एक नवा प्रेरणा मिलथे। आज कार्यक्रम के शुरुआत मैं एथलेटिक्स मा देश के ऐसने उपलब्धि लेकर हूँ। कुछ दिन पाछू झारखंड के रांची मा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुईस। एमे करीबन 800 एथलीट मन हिस्सा लेन देश भर ले आए रहिन। ये दौरान चार आने आने आयोजन मा चार राष्ट्रीय कीर्तिमान टूटीस। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, ये संगवारी मान आने आने श्रेणी में नवा कीर्तिमान बनाइन। मैं सबले पहली तो ये सबो मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ। संगवारी हो, एक आयोजन जेखर देश भर में बहुते चर्चा हुआ थे वो है 100 मीटर रेस, 100 मीटर के दौड़। खाली 2 दिन के भीतरी पुरुष 100 मीटर के दौड़ में राष्ट्रीय कीर्तिमान 3 घाव टूटिस। जेन 2 झन एथलीट मन ये कमाल दिखाए हैं वो हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैं सोचे ये पैत मन की बात में ये दोनों खिलाड़ी मन ले गोट करे जाए। अनिमेश जी जोहार, गुरिंदर वीर आप मन लग घलो जोहार, सत श्री अकाल।
3: जोहार सर।
4: जोहार सर।
2: अच्छा भैया, आप मन ता बहुते बड़का उपलब्धि पाए हो। आप मन के जोड़ी है घलो बड़का कमाल करे है। हमन संगीत माता जुगलबंदी देखे रहें, फिर चुनौती मा अब जुगलबंदी होते कि एक घाव एक झन चुनौती देते, फिर दूसर उही चुनौती ला उठा लेते, फिर तीसरैया घाव कर लेते। बहुते रोचक विषय रहे हैं आप मन के। मैं चाहत हूँ कि मन की बात के सुनैया मन ला पता चले कि आप मन के विषय में वो मन ला जानकारी होवे। आप मन जिन पराक्रम करे हो ओखर पता चले।
3: जोहार सर, मोर नाव अनिमेश कुजूर। मैं 200 मीटर और 400 मीटर के राष्ट्रीय कीर्तिमान धारक हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ के रहैया हूँ सर, और अभी मैं उड़ीसा ले खेलता हूँ।

0: मैं पाछू बछर एशियाई पदक और विश्वविद्यालय खेलकूद पदक लेके आए हूँ। और मैं 2021 में एथलेटिक्स चालू करे हूँ। जब मैं स्कूल ले पास हो रहे हूँ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर ले पास हुए हूँ। और मैं पहली फुटबॉल खेलत रहे हूँ। और मोर दाई दादा मन कोविड के बखत मोला थोड़ बहुत छूट देवत रहिन कि तैं बाहर जाके दौड़ ले, खेल ले। त जब कोविड खत्म होए लगीस तब तो मोर फुटबॉल के दोस्त मन मोला कहिन कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होइया है, तय घलो भाग ले। और मैं भाग ले हूँ। और मोला पता नहीं रहीस कि वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर के चयन हुआ थे। मैं वहाँ ले राष्ट्रीय स्तर में चयनित हुए हूँ। और आज मैं भारत के प्रतिनिधित्व करत हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में।
1: औ गुरिंदर वीर सिंह जी का है?
2: जोहार सर, मोर नाव गुरिंदर वीर है। और मैं भारतीय जल सेना मा पैटी ऑफिसर हव। और मैं भारत के सबसे तेज धावक हव। अभी मैं 100 मीटर मा 10.09 के राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाए हव। और मैं पहली भारतीय हव जेन 10.1 के बाधा के नीचे भागे है। और मैं प्रयास करत हूँ कि मैं ट्रैक और वर्दी में घलो अपन देश के सेवा करो। मोर दादा और बाबा दोनों खेल कूद वाला रहिन। ता हमर भारत के संस्कृति है, जब भी कोनो त्योहार आते जैसे दिवाली, जैसे नवा बछर, ता हम अपन घर के सफाई करथन। ता मैं अपन दादा के ट्रॉफी और पदक मन के सफाई करत रहो ता मोला वो बहुत अच्छा लागत रहीस। मैं बहुत खुश होवत रहो। तो जब मैं कोनो ट्रॉफी साफ करत रहो तब मैं पूछत रहो कि भाई ये ट्रॉफी कहाँ जीते रहो, ये पदक कहाँ जीते रहो, ये फोटो कब के है। तब फिर वो मन मोला अपन कहानी सुनावत रहिन कि भाई मैं यहाँ खेले बर गेव, मैं ये राष्ट्रीय पदक जीते हूँ, मैं अपन टीम ला ए में जितायो। तब फिर मैं घलो वो मन ला बोले कि भाई मैं घलो कोनो खेल खेलना चाहत हो। वो बिहनिया दौड़े बर जावत रहिन तब मैं उन ला बोले हो भाई मोला घलो अपन संग ले जाए करो। तब मोला ले के जाए लगिन तब वो मन अपन खेल मा जिन सीखे रहिन वो मोला सिखाए लगिन। तब मोर रुचि बने लगीस। मैं उसेन बोल्ट के विश्व रिकॉर्ड टूटत देखे हो, एक मनोरंजक कहानी है। मैं टीवी देखत रहो तब मोर दाई टीवी ला बंद कर दीस कि बेटा अभी पढ़े के बेरा हो गए है, ते पढ़। तब मैं कहो भाई ठीक है, आप मन मोला टीवी देखेला नहीं देवत हो, एक दिन ऐसे आही आप मन मोला टीवी मा खोजहु कि देखो वो गुरिंदर दौड़त है। तब मोला घलो खुशी होते जब मोर दाई मोला टीवी मा दौड़त देखते।
1: वाह वाह वाह, बहुत शानदार बात है भाई आप मन के।
2: हाँ जी, मध्यम वर्गीय परिवार है सर। फिर मोर दादा बालीबाल खेलत रहिन, घर के समस्या के चलत वो मन अपन खेलकूद छोड़ दिन। उखर जेन सपना रही गई रहीस तब वो मन मोर भीतर वो सपना देखिन भाई मोर बेटा वो सपना पूरा करही। तब मैं उखर ले बात करेव, फिर सुनत रहो मिल्खा सी अतका मेहनत करत रहिन। मैं वो मन ला कहत रहो मैं घलो एक दिन आप मन के सपना पूरा करूँ। तब बोलिन सपना पूरा ऐसे नहीं होए, एकर बर बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ते, मेहनत करना पड़ते। मिल्खा सिंह जी खून के उल्टी करत रहिन, धूप माँ भागत रहिन, पूरा पूरा दिन प्रशिक्षण करत रहिन। ता वो चीज़ मोला प्रेरित करत रहीस। मोर दादा मोला प्रेरित करत रहिन कि मैं भागू ता अपन देश खातिर पदक लावाओ जीताओ। और ये घलो रहीस कि भाई जब मैं 100 मीटर के विधा के चयन करेव ता सबो मन कहत रहिन कि भाई 100 ला झन कर, 100 भारतीय मन के विधा नहीं है, भारतीय मन के शरीर 100 मीटर बर नहीं बने हैं। त मैं और मोर दादा हरदम बोलत रहन कि अभी गुरिंदर ए चयन करे है, हम एकर ले पाछू नहीं हटबो। जेन मन हमन ला बोलते कि भाई हम नहीं कर सकन, हम वो मन ला करके दिखाबो औ ते करके दिखाबे, मोला तोर ऊपर भरोसा है। त वो भरोसा जब मोर दादा मोर ऊपर करीस त मैं वो भरोसा ला अपन हिम्मत बना के चले। औ आज हर भारती बोलते कि भाई भारती दौड़ाओ।
1: देखो आप दोनों जन बहुते बड़का कमाल करे हो, और खाली 2 दिन के भीतरी आप दोनों जन 3 घाव राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हो। 100 मीटर के रेस में दौड़ना जैसे गुरिंदर वीर है कहिस कि लोगन कही थे कि भारत के लोगन मन के बदन ये काम बर हैच नहीं, अत का अलकर होवत हुए

0: हेलो, आप मन काम करे हो तो ये दोनों मन ले मैं जानना चाहूँ, और मन की बात के सुनैया मन घलो सुनना चाहें कि कौन से जज्बा रहीस, का जिद रहीस, का सोचे रहे हो और कैसे करत रहे हो, ये कतका मुश्किल होते।
1: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं शुरू में जब संघर्ष करत रहे हो सर, कईयो बार संसो में रहे हो कि मैं सही करत हो, मैं सही चयन करे हो, काहे कि हर बारी आप मन नहीं जीतो, कभू कभू आप मन सीखता हो, जब मैं हारे हो, जब मोर सही प्रदर्शन नहीं आईस, जब चोट लग जात रहीस तब मोर घर वाला मन मोला सहारा देन की भई कुछ नहीं, एक दिन बुरा चल दीस, एक बछर बुरा चल दीस, त एकर ले जिंदगी खराब नहीं होए, सपना देखना नहीं छोड़न। त मोर प्रशिक्षक का घलो मोला ये सिखाइस कि अगर तय नहीं करबे त कोनो अऊ नहीं कर पाही। त ऐसने जब हमर समुदाय हमर तीर तखार के लोगन मन हमला उत्साहित करते ता हमर प्रोत्साहन नहीं टूटे।
0: अनिमेश जी।
2: सर, मोला ता सबो मन बोलत रहिन जब मैं 2021 मा एथलेटिक्स चालू करे हूँ, तब मोला कहिन कि देख ये नवा क्षेत्र है, तय कर पाबे कि नहीं, तब मैं कहूँ कि मैं ये क्षेत्र में घुस गए हों तक करबे करूँ। मोर ददा घलो हरदम मोला बोले कि तय ये क्षेत्र में घुसे हस तो कभू पाछू मुड़ के झन देखबे, काहे कि सोचते था सबो मन कि ये करना है वो करना है, फिर करके बहुते कम झन दिखाते, तैं बस यही क्षेत्र में घुसे हस त यही मरेबे, यही में आगू बढ़बे, तोला सबो सुविधा सब जिनिस सहयोग हम करबो, पारिवारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सबो चीज हमन करबो, बस तैं मेहनत कर और भारत ला देखा कि भारतीय मन घलो भाग सकते। काहे कि लोगन मन मोला घलो कहत रहिन कि भारतीय मन के जीन्स ऐसे नहीं हैं कि वो मन 10 के नीचे या 10.1 के नीचे माँ भाग ले सकें या तेज दौड़ सकें, फिर अब हम दोनों जन सिद्ध करे हैं कि भारतीय मन घलो कर सकते, ऐसन कोनो कठिन नहीं है हमन बर, हम घलो सब कुछ कर सकत हन। त सर, ये सबो मोला बहुत प्रोत्साहित करते, और जैसे जैसे हम प्रशिक्षण करत हन, हम और अपन समय सीमा ला तोड़त हन, और बाकी भारतीय मन ला घलो ये दिखत है कि भारतीय मन घलो कर सकत हैं, और हम औ करबो सर अभी, और हम दोनों झन के चयन कॉमनवेल्थ गेम खातिर घलो होए है, तो वहाँ अवैया प्रतियोगिता में हम और अच्छा प्रदर्शन करबो।
0: अच्छा, देखो मोर मन में घलो एक कौतूहल है और लोगन मन ला घलो हो ही। मैं सुने हूँ कि आप दोनों झन अच्छा दोस्त घलो हो, आप दोनों झन कुछ ठाने रहे हो का कि तय मोर रिकॉर्ड तोड़ेस तो मैं तोर रिकॉर्ड तोड़ देवाऊँ का, पहली अनिमेश बताही।
2: सर जी, पहली रिकॉर्ड 10.18 के रहीस जेन मोरेच रहीस, और फिर एला गुरिंदर वीर भैया हा सेमीफाइनल में तोड़ देस 10.17 करके, और मैं फिर ओला दूसर सेमीफाइनल में 10.15 करके तोड़ देऊँ। तो ओ बखत जब मोर सेमीफाइनल होइस तो हम दोनों झन खुश होइन कि चलो ठीक, आज रिकॉर्ड टूटिस और चलाओ हम दोनों झन तोड़ेन, काहे कि वो बखत प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदिता रही थे, फिर हम दोनों झन पहली स्थान के रखे रहन, एकर ले पहली हमन प्रतियोगिता पर सऊदी अरब घलो गए रहन, वहाँ हम दोनों झन एक कमरा में रहन, त हम दोनों वहाँ गोट करन कि भारत के दौड़ ला आगू लेके जाना है, और हमरे छात में है वो चीज़, हम जेन करबो वो आने मन ला प्रोत्साहित करही।
0: गुरिंदर वीर, का कहना चाहू?
1: हम दोनों झन निर्णय करे रहन, हम दोनों झन बने दौड़बो, त सर एक दूसर ला कभू जरूरत होते ता एक दूसर संग खड़े होथन, जैसे अभी रिकॉर्ड करे ले पहली जब मैं रिकॉर्ड करे फिर अनिमेश करीस, त जब हम वार्म अप करत रहन त मैं अनिमेश ला बतावत रहो कि अनिमेश वो ब्लॉक सही है, ओमे जाके बैठ, वहाँ ले छलांग लेबे, हमन वार्म अप यहाँ करबो, यहाँ वार्म अप सही होही, त एक दूसर के मदद करथन त दूसर में घलो सुधार होते, हमन में घलो सुधार होते, दोस्ती घलो चाही, फिर मैदान के बाहर है सर, प्रतियोगिता के बाहर है ता हम दोस्त हन, जब हम मैदान में जाथन ता एक दूसर के प्रतियोगी बन जाथन, ता ये होते कि मैं एकल ले ज़्यादा तेज भागू, मैं एकल ले तेज भागू।
0: देखो आप मन जेन स्पर्धा करे हो ना, वो देश के मान बढ़ाए खातिर करे हो, देश ला भविष्य में ये ठिया तक पहुँचाए खातिर करे हो, और एक सकारात्मक भावना लेकर रहो, और मैं मानता हूँ

0: कि आपके ये जेन खेल भावना है, खेलना घलो है, एक दूसर ला चुनौती घलो देना है, और फिर आगू निकले के प्रयास करना है, और फिर आगू जाए बर एक दूसर के सहायता करना है। ये अद्भुत काम करे हो आप मन, मोर कोती ले आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना, और आप मन देश के नाव घलो उजर करहू, मुला पूरा विश्वास है आप मन ऐसने मेहनत करत रहो, बहुत प्रगति हो ही, मोर गाड़ा गाड़ा शुभकामना।
1: धन्यवाद सर, आप मन के धन्यवाद,
0: गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, ये बखत देश के ज्यादातर हिस्सा मा बहुत गर्मी पड़त है, तेज घाम, गरम हवा, ऐसन मौसम मा अपन ध्यान रखना बहुते जरूरी है। पानी पियत रहो, घाम मा अगर निकलना पड़े तो थोकिन संभल के निकलाओ। ये दिशा मा सरकार के आने आने विभाग मन जिन दिशा निर्देश जारी करे हैं वो घलो भुलाहू जन। संगवारी हो, हमार यहाँ गर्मी ले लड़े के तरीका कईयों बार रसोई में घलो मिलते, आप मन घलो देखे हो, जैसे जैसे गर्मी बाढ़ते वैसे वैसे घर के रसोई के स्वाद बदलत जाते, रसोई के प्रकार बदल जाते, कहूँ मटका के पानी निकलते, कहूँ दही जमे लगते, तो कहूँ कच्चा आमा उबले लगते, और फिर शुरू होते देसी पेय के दौर। देसी पेय ले आप मन घलो परिचित हो, अगर आप मन उत्तर भारत में जाहू तब बने जगह आप मन ल मिल ही आम पना, कच्चा आमा के स्वाद और गर्मी ले राहत घलो। पंजाब हरियाणा जाहू तो लस्सी मिल जाही, बड़का गिलास वाला लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाना के संगवारी बन जाते, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू के शरबत, ओखर तो बाते का है, पेट घलो भराए ताकत घलो देवाए। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और उड़ीसा में बेल पना। वो खाली पेय नहीं, भारत के आने आने क्षेत्र के परंपरा के हिस्सा है, और एमे एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के झलक घलो मिलते। और एक ठन बात खचित ध्यान रखू, एमे ले ज्यादातर जिनिस हमार अपन रसोई ले निकले है, हमार खेत खलिहान ले निकले है, कोनो बड़ा ब्रांडिंग नहीं है, फिर पीढ़ी मन के अनुभव एमे समाय हुए है। आप मन घलो गर्मी मा देशी पेय के खूबे आनंद लेवाओ। संगवारी हो, गर्मी के आतेच एक ठन औ चर्चा हर घर मा शुरू हो जाते, और वो है आमा। आमा, आम चर्चा के विषय होते। भारत मा शायदे कोनो घर हो ही जिहा गर्मी मा आमा के बात नहीं होत होवे। हर इलाका के अपन आमा, अपन स्वाद, अपन सुगंध। महाराष्ट्र और कोंकण के हापुस, अल्फांसो, गुजरात के केसर, ये तो आमरस के जान हैं। उत्तर प्रदेश के दशहरी और मोर काशी के लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम के खास बात होते, पके के बाद घलो ओखर रंग कईयों बार हरच रही थे। बिहार के जरदालू, जेकर सुगंध दूरच ले चिन्हा जाए। चौसा, मालदा, हर नाव के संग लोगन मन के सुरता जुड़ियाए है। दक्षिण भारत जावो त बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल के हिमसागर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सुवर्ण रेखा, माने ठिया बदलते आमा के रंग रूप और ओखर स्वाद घलो बदल जाते। और संगवारी हो, आमा के ये यात्रा अब गांव ले वैश्विक बाजार तक घलो पहुँचा थे। आज मन की बात के माध्यम ले मैं आमा के पैदावार ले जुड़े अपन किसान भाई बहनी मन के प्रशंसा करूँ। आप मन देश के कृषि अर्थव्यवस्था खातिर आम किसान नहीं, बहुत विशेष हो, ऐसने छाए रहो। संगवारी हो,

गर्मी के ये दिन मा ऐसे ता स्कूल मन के छुट्टी होते, फिर मैं एक ऐसन वर्ग के बात करहूँ जेमे आप मनला प्रवेश लेके मन कर जाही। संगवारी हो, एक स्थिति के कल्पना कराओ, एक ऐसन स्कूल जिहाँ लइका मन आथे, युवा मन आथे और सियान मन घलो, जिहाँ कोनो फीस नहीं लगे, कोनो बड़का इमारत नहीं है, कोनो कक्षा घलो नहीं है और सबले रोचक बात उहाँ कक्षा नदिया में लगते। संगवारी हो, ये कोनो कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा मा साजी वाला शेरिल जी ऐसने एक ठन तैराकी क्लब चलावत हैं। अब तक 15,000 ले ज़्यादा लोगन मन यहाँ तौरना सीख चुके हैं। साजी जी हा दिव्यांग लड़का मन ला घलो तौरना सिखोए हैं। ये प्रयास के पाछू एक पीड़ा घलो छुपे है। कुछ बछर पाछू एक नाव दुर्घटना मा कईयों छात्र मन के मौत हो गए रहिस। ये घटना हा साजी जी ला भीतरी तक झकझोर देस। वो मन सोचिन, अगर लड़का मन ला तौरना आवत होतीस तो शायद कईयों जान बच जातीस। बस इन्हें ले शुरू होइस उनखर ये अभियान। संगवारी हो, साजी वाला शेरिल जी के जिंदगी हमन ला एक ठन बहुते बड़का सीख देते। सेवा करे बर बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होवे, जरूरी होते एक अच्छा इरादा और सरलक करेगे प्रयास। एखरे दम मा हजारों लोगन मन के जिंदगी मा बदलाव लाए जा सकत है। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, पहाय दिन मा मुला यूरोप के नीदरलैंड जाए के मौका मिलिस। उहां मैं कईयों ठन बैठक में सम्मिलित होए। इही दौरान एक ऐसन क्षण आइस जेन हर भारतीय ल गर्व ले भर देस। नीदरलैंड मा आयोजित एक विशेष समारोह मा चोला काल के प्राचीन ताम्र पट्टिका भारत ल वापस सौंपे गईस। ये कार्यक्रम मा नीदरलैंड के प्रधानमंत्री घलो उपस्थित रहिन। ये ताम्र पट्टिका मन ल लेके मुला देश विदेश ले सरलग संदेशा मिला थे। लोगन मन खुशी व्यक्त करत हैं, गर्व व्यक्त करत हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में घलो एला लेके विशेष उत्साह है। संगवारी हो, ये ताम्र पट्टिका मन ला लेके लोगन में बने जिज्ञासा घलो है। यही पाए के आज मैं एखर ले जुड़े कुछ बात आप मन संग साझा करना चाहत हूँ। एमे 21 बड़ा और 3 छोटे ताम्र पट्टिका है। ये मुख्य रूप ले राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपन पिता राजा राज राजा चोला के एक ठन वचन ला पूरा करे ले जुड़े है। एमे आने मंगलम गांव के एक बौद्ध बिहार ल दान दे के उल्लेख है। ये ताम्र पट्टिका मन मा चोला वंश के उपलब्धि के वर्णन घलो मिलते। एखर ले पता चलते कि चोला साम्राज्य के समुद्री शक्ति कतका जबर रहिस। दक्षिण पूर्व एशिया के देश मन संग इनखर संबंध के जानकारी घलो एमे मिलते। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति मा हम सबो मन ला बहुत गर्व है। संगवारी हो, हमर सरकार भारत के ऐसन अमूल्य धरोहर मन के संरक्षण खातिर सरलग प्रयास करत है। इही क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार मा घलो एक महत्वपूर्ण खोज होए है। यहाँ 3 ठन दुर्लभ ताम्र पट्टिका मिले है। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासन काल ले जुड़े माने जाते। विशेषज्ञ मन मानते कि ये शिलालेख 6वां-7वां सदी के है, माने 1400-1500 बछर जुन्ना ये ताम्र पट्टिका मन प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाखा मा लिखाए है। एमे वो बखत के शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे मा महत्वपूर्ण जानकारी मिलते। संगवारी हो, हम भारतीय मन मा खगोल विज्ञान माने एस्ट्रोनॉमी ला लेके हरदम विशेष आकर्षण रहे है। हमर देश मा आज घलो कईयों सदी जुन्ना वेधशाला विद्यमान है। यहाँ अद्भुत गणितीय खोज होए है।

नौचालन हो, पंचांग हो या हमर परब तिहार, ये सब के संबंध आगास और तारा मन ले रहे हे। हमर यहाँ एस्ट्रोनॉमी हर पीढ़ी मा कौतूहल जगाए हे, एला अन्वेषण बर प्रेरित करे हे और आज के युवा मन मा घलो एला लेके बने उछाह दिखते। आजकल आप मन घलो देखत होहु, देश भर मा एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी ले लोकप्रिय होवत हे। बड़ा शहर ले छोटा कस्बा तक, स्कूल ले बगीचा तक इनखर गतिविधि देखे ला मिलते। मुला बंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलिस। यहाँ अवलोकन सत्र आयोजित करे जाते। ये संस्था है ग्रामीण क्षेत्र मा एस्ट्रोनॉमी ला लोकप्रिय बनाए के मिशन घलो शुरू करे है। खगोल मंडल नाव के एक टीम है, 30 घंटा के एक बहुते नवाचारी पाठ्यक्रम शुरू करे है। संगवारी हो, रात मा तारा मन ल निहारना अपन आप मा अद्भुत अनुभव होते। एस्ट्रो केरला नाव के एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और कार्यशाला आयोजित करते। यहाँ युवा साथी मन टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स के उपयोग करना सीखते। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब है गीर के जंगल ले कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट आयोजित करे है। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था घलो एस्ट्रोनॉमी के सबले जुन्ना संस्थान मा एक है। यहाँ अवलोकन सुविधा के संगे संग किताब, पुस्तकालय और टेलीस्कोप लाइब्रेरी के सुविधा घलो है। मैं आईसेक के घलो उल्लेख करना चाहूँ। ये एक विद्यार्थी मन द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है जिन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब मनला आपस में जोड़ते। संगवारी हो, अपन शौक बर बखत निकालना और सरलग कुछ नवा सीखत रहना बहुते जरूरी है। मैं युवा मन ले आग्रह करूँ कि कोनो एस्ट्रोनॉमी क्लब ले खचित जुड़ें और ये छुट्टी मन मा कोनो तारा घरला घलो देखेला खचित जावें। संगवारी हो, मन की बात कार्यक्रम ला जेन लोगन मन टीवी मा देखत हैं, मैं वो मन ले कहूँ एक वीडियो खचित देखाओ। ये वीडियो पाछू दिन बहुते चर्चा मा रहिस। एमे कुछ लोगन मन बहुत धैर्य ले, बहुत सावधानी ले एक गंगा डॉल्फिन ला बचाए की कोशिश करत हैं। आप मन ला ये जान के आश्चर्य हो ही, ये जम्मू प्रयास मा करीबन 13 घंटा लगिस और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गईस। संगवारी हो, एमे बहुते बड़का भूमिका रहीस भारत के पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के। ये घटना उत्तर प्रदेश के है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गए रहीस। ऐसन बखत में नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बने ये एम्बुलेंस ओखर बर उम्मीद बन के पहुँचिस। फिर बहुते सावधानी ले ओला बाहर निकाले गईस, ओखर जांच करे गईस, ओखर इलाज करे गईस और ओखर बाद ओला सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दे गईस। एक रकम ले कहन त एक जिंदगी फिर अपन घर लहूट गईस। संगवारी हो, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुते खास है। एला एक चलत फिरत अस्पताल कस तैयार करे गे है। एमे डॉल्फिन ला सुरक्षित रखे के व्यवस्था है, ऑक्सीजन के सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। माने अगर कोनो डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी ले कट जाए त तुरते ओखर सहायता करे जा सकत है। संगवारी हो, जब हम गंगा डॉल्फिन ला बचाथन त हम खाली एक प्रजाति ला नहीं बचावन, हम गंगा के जैव विविधता ला बचाथन, नदी के पूरा जीवन तंत्र ला बचाथन और अपन अवैया पीढ़ी खातिर प्रकृति के एक अमूल्य धरोहर घलो बचाथन। मोर देश के मयारुक रहवैया हो, आप मन ले बहुत अकन लोगन के नदिया, तरिया या कुआं के पानी ले जुड़े सुरता खचित हो ही। कोनो ला तरिया में तौरना याद हो ही, कोनो

संगवारी मन संग तरिया के तीर म खेलना कोनो ला वो माटी के सुगंध के सुरता होही। ननपन के ऐसन याद जिंदगी भर मन म बसे रहते। संगवारी हो, ऐसने याद मन ल बचाए के एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला ले आघू म आए हे। बस्ती के आकाश गुप्ता अपन गांव के मनोरमा नदी ल देख के बहुत दुखी होवत रहिन। काहे कि जे नदी ल वो मन ननपन म साफ और जीवंत देखे रहिन, बखत के संग वो नदी म प्लास्टिक जमा होय लगिस, गंदगी बाढ़त चले जात रहिस। श्रीमान आकाश ह तय करिन कि शिकायत नहीं करही, एक नवा शुरुआत करही। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गईस। वो मन अपन संगवारी मन ल साथ लेन खाली जाल रहीस, रापा रहीस, झुहा रहीस और सबले बड़का ताकत रहीस कुछ बदले के संकल्प। ये युवा मन नदिया मा उतरत रहिन, जलकुंभी निकालत रहिन, प्लास्टिक और कचरा बाहर लावत रहिन। कईयों बार एक दिन मा 50-60 किलो तक कचरा नदी ले निकाले गईस। धीरे धीरे मनोरमा नदी के वो हिस्सा फिर साफ दिखे लागिस। तीर तखार के लोगन मन के ध्यान घलो ये काम कोती गईस। लोगन मन मा स्वच्छता ला लेके जागरूकता बाढ़िस। संगवारी हो, ऐसने एक प्रेरक कहनी गोवा ले घलो आघू आए हे। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, फिर समाज भर काम करे के उनकर उछाह आज घलो वैसने हैं। उनला मड्डी तोलाब क्षेत्र मा पानी के समस्या बहुत परेशान करत रहिस। वो मन घलो समाधान खातिर काम शुरू करिन। बालकृष्ण जी ह पाइपलाइन बिछाए के काम महत्वपूर्ण भूमिका निभाइन। एखर ले कईयों घर तक पानी पहुंचिस। जिन परिवार मन ल पानी खातिर रोज संघर्ष करना पड़त रहिस, उनखर बर ये बहुत बड़ा राहत बनिस। संगवारी हो, पाछू महीना मुला एक बहुते अच्छा अनुभव होइस। एखर संबंध मन की बात ले घलो जुड़े हे। इही पाए के आज मैं एखर चर्चा आप मन ले करना चाहत हूँ। तमिलनाडु के नागर कोइल मा मोर भेंट एक शिक्षक ले होइस। करीबन 3 दशक पहली घलो मैं वो मन ले मिले रहे हूँ। मैं बात करत हूँ गिरिजा अम्मा जी के। ये भेंट के दौरान कुछ युवा विद्यार्थी मन घलो उनखर संग रहिन। संगवारी हो, गिरिजा अम्मा जी करीबन 15 स्कूल चलाते। एमे चेन्नई के जय गोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनखर देशभक्ति के भावना हर भारतवासी ल प्रेरित करने वाला है। वो मन की बात ले प्रेरणा लेके देश के अनेक सैनिक मन बर योगदान के संकल्प लिए हैं। एखर बर वो मन अपन सब्बो स्कूल के विद्यार्थी मन ल प्रेरित करिन। वो मन लैका मन ले कहिन कि वो मन वीर जवान मन बर हर दिन 1 रुपया योगदान करें। माने एक बछर मा हर विद्यार्थी कोती ले 365 रुपया जमा होइस। ये नान नान योगदान ले करीबन 40 लाख रुपया इकट्ठा होइस। गिरिजा अम्मा जी हा ये पूरा राशि के चेक मुला सौपिन। वो मन ले गोटबात के दौरान मैं महसूस करें कि माँ भारती के प्रति उनखर समर्पण कत का गहिर है। पाछू बछर चेन्नई के पहली हिंदू विद्यालय है अपन 50 बछर पूरा करे है। देश के शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव ला आघू बढ़ाए मा ये स्कूल नेटवर्क के भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं एखर ले जुड़े सब्बो लोगन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ और वो विद्यार्थी मन के घलो विशेष सराहना करत हूँ जेन मन अपन वीर सैनिक मन खातिर योगदान दिए हैं। संगवारी हो, भारत के हर गांव मा हर शहर मा कुछ न कुछ ऐसन होवत है जेन हमन ल प्रेरणा देते। कईयों बार ये प्रयास मन के ज्यादा चर्चा नहीं होवे, फिर जब हम इन ल जानथन तो ये विश्वास औ मजबूत होते कि देश अपन लोगन मन के शक्ति ले

0: आघु बढ़त हे। मोर आप मन ले आग्रह हे, अपन तीर तखार मा ऐसने प्रयास मन ला खचित देखाओ, जेन लोगन मन समाज खातिर अच्छा काम करत हैं वो मन ला चिन्हाओ, उनखर सराहना कराओ, वो मन ले सीखाओ, और हो सके त खुद घलो कोनो अच्छा काम ले जुड़ाओ। अवैया महीना मन की बात मा कुछ औ प्रेरक गाथा मन संग मैं फिर आप मन ले जुड़ूं। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, जोहार।
1: FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी

0: देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बात

0: बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

0: और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार।

रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रशांत कुमार साहू का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब मोबाइल नहीं कैसेट हुआ करती थी, जब गानों को सुनने के लिए लोग रेडियो के सामने इंतजार करते थे और जब एक आवाज़ पूरे देश के युवाओं की धड़कन बन चुकी थी। वो आवाज़ जिसमें मिठास भी थी, शरारत भी और एक अलग ही अपनापन। लेकिन आज हम शुरुआत में उस सिंगर का नाम नहीं बताएंगे, पहले सुनते हैं उनका एक ऐसा गीत जो 90s के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक सॉन्ग्स में गिना जाता था।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुँचत है जन जन के द्वार।
2: श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे ये आवाज जो है 90s के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य की। 30 अक्टूबर 1958 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे अभिजीत ने शुरुआत में कॉमर्स की पढ़ाई की। मुंबई आने का उद्देश्य संगीत नहीं बल्कि आगे की पढ़ाई था, लेकिन किस्मत उन्हें संगीत की दुनिया की ओर ले आई। मुंबई की शुरुआती दिनों में उनकी शुरुआती जो दिन थे वो आसान नहीं थे। उन्होंने छोटे स्टेज शो किए, ऑर्केस्ट्रा में गाया और धीरे धीरे म्यूजिक डायरेक्टर्स तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। उनके करियर का बड़ा मोड़ तब आया जब महान संगीतकार आर डी बर्मन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। फिल्म आनंद और आनंद में उन्हें गाने का अवसर मिला। यही से प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में उनका सफ़र शुरू हुआ।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: 90s का दौर आते आते अभिजीत की आवाज बॉलीवुड की सबसे पहचानी जाने वाली आवाज़ों में शामिल हो चुकी थी। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खासियत थी स्पष्ट शब्द, मधुर आवाज़ और गाने के भाव को पूरी सादगी से पेश करना। रोमांटिक सॉन्ग्स में उनकी आवाज़ अलग ही असर छोड़ती थी। इसी कारण 90s के कई बड़े संगीतकारों ने उन्हें लगातार अपनी फिल्मों में मौका दिया। उन्होंने जतिन ललित, नदीम श्रवण, अनु मलिक और आनंद मिलिंद जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट्स सॉन्ग दिए।

वाहनों में नए कैसेट रिलीज होने पर लंबी चर्चा होती थी, और अगर किसी कैसेट में अभिजीत का गाना हो तो लोग उसे खास तौर पर सुनना पसंद करते थे। 1990 और सन 2000 के शुरुआती समय में उन्होंने हजारों गानों को अपनी आवाज़ दी। हिंदी के अलावा बंगाली, भोजपुरी, मराठी और अन्य भाषाओं में भी उन्होंने गायन किया। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कई गीत का आज भी FM रेडियो और म्यूज़िक प्लेलिस्ट में लगातार सुनाई देते हैं।

0: माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 1 मई ले 10 जून तक छत्तीसगढ़ मनावत है सुशासन तिहार 2026।
1: सरकार पहुंचत है जन जन के द्वार।
2: श्रोताओं, उन्हें सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं मिली बल्कि सम्मान भी उन्हें भरपूर मिला। 1977 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई संगीत पुरस्कारों में उन्हें नॉमिनेशन और सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंसेस और लाइव कंसर्ट्स के माध्यम से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई। आज भी जब 90s म्यूज़िक की बात होती है तो उनकी आवाज़ का जिक्र ज़रूर होता है।

नहीं गाती बल्कि समय की याद बन जाती है। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ भी उन्हीं में से एक है। 90s का वो दौर आज भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में वैसे ही बसे हुए हैं। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे संगीत की दुनिया की एक और खूबसूरत कहानी के साथ। नमस्कार। एक ही कलाकार, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था, लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होंठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सब पुल है जो एहसास बनाती है।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

दुनिया की रीत है प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं, लीजिए सुनिए समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari.

ट्रांसमिशन स्टूडियो। अभी यहाँ घड़ी में 5:27 और 54:55 56:57 सेकंड हुए हैं। हेलो, ओके, ट्रांसमिशन स्टूडियो टेस्टिंग, ओके।